ईस्ट बाउंड लेफ्ट लेन की ट्रैफिक ब्लॉक्ड है, अदर लेन्स में इसका असर है। ईस्ट बाउंड 64th एवेन्यू सेंटर स्ट्रीट नॉर्थ पर भी एक्सीडेंट और ईस्ट बाउंड लेफ्ट लेन की ट्रैफिक ब्लॉक्ड है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक यहां पर मिलेगी। 36th स्ट्रीट 8th एवेन्यू साउथ ईस्ट वाला एक्सीडेंट अभी तक उसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, क्लियर नहीं हुआ है। कोई जानकारी हमारे लिसनर्स हम तक पहुंचाना चाहें तो 4032861010 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ड्राइव सेफ। मान इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स वालों ने ये रिपोर्ट को स्पॉन्सर किया है। आज की डील के बारे में सुने। अगर आपको जाना है भाई, कमाल की डील्स हर रोज ही आपके लिए लेकर आते हैं। वैसे मैं बता दूं कि कैलगरी से दिल्ली का ट्रिप दो सूट केसेस आपके लिए और ये वन वे है, $896.92 में सितंबर में ही जाना है। और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन है, अगर कैलगरी से अमृतसर जाना है $936.54 में एक पीस पैकेज है और ये भी डिपार्चर जो है वो सितंबर के लिए ही है। इसके अलावा मनीला या सिंगापुर भी अगर आपकी डेस्टिनेशन है तब भी आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जानकारी चाहिए हो या वेकेशन पैकेज भी आपको बुक करवाना हो, इन्हें कांटेक्ट करें 5876060104। नाम याद रखें, मान इंटरनेशनल ट्रेवल्स। ऑल्सो दिस रिपोर्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय लवली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट्स। नॉर्थ ईस्ट में इनकी चार लोकेशंस हैं जो कि आप विजिट कर सकते हैं, चाहे वेस्ट विंग्स ड्राइव, स्काई व्यू, सवाना प्लाजा या रेड एम्बर्स में वेज नॉन वेज फूड और मिठाइयां आप यहां से ले सकते हैं। और किसी फंक्शन के लिए केटरिंग करवानी हो तब भी आप इन्हें कॉन्टेक्ट करें। लवली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।

0: number one South Asian radio network.
1: काम ते सारा दिन खड़ के थक जानी हूं मैं, पैरां ते लोअर बैक दी तां बस हो जांदी है।
2: तेरे कोल बेनिफिट्स हैगे है ना?
1: हां,
2: फिर केयरिंग जा, एक पंथ दो काज कर, एक तक 31 दिसंबर तो पहले

0: इस साल दे बेनिफिट्स दा फायदा ले हो जाना, दूजा कस्टम ऑर्थोटिक्स बनवा के तेरी तकलीफ दा भी हल हो जाना, नाले तू कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पाया कर, ओ भी उत्थे मिल जानिया।
1: केयर इंक दे सर्टिफाइड पेडोटिस्ट लेटेस्ट 3D टेक्नोलॉजी नाल पैरां दा चेकअप करके कस्टम ऑर्थोटिक्स बनाउंदे ने। कॉल 403-605-6300 403-605-6300। केयर इंक, तुहाडी सेफ्टी साडा विश्वास।
2: Ladies, are you ready to take the driver's seat of a new career? Here's your chance to gain valuable skills, build confidence, and get job ready. With over 18 years of experience, People Driving Academy is offering Class 3 licensed training with air brake, specially designed for women and funded by the Government of Alberta. Call 403-612-0040, 403-612-0040, or visit peopledriving.ca. People Driving Academy, your go to destination for the great lessons.
3: बॉम टूल्स लेके आए हैं डिवॉल्ट स्पेशल इवेंट कैलगरी विच सिर्फ एक दिन ले, फ्राइडे 11 सितंबर नो। डिवॉल्ट ते कॉर्डलेस टूल्स, हैंड टूल्स ते एक्सेसरीज ते अमेजिंग डील्स अते फ्री गिफ्ट्स।
4: डिवॉल्ट 20 वोल्ट कॉर्डलेस टूल्स ते $299 जा इस तो वध स्पेंड करो अते लाओ डिवॉल्ट 20 वोल्ट मैक्स 5 एम्स बैटरी बिल्कुल फ्री। डिवॉल्ट 60 वोल्ट कॉर्डलेस टूल्स ते $749 जा इस तो वध स्पेंड करो अते लाओ डिवॉल्ट 9 एम्स फ्लेक्स वोल्ट बैटरी फ्री।
3: डिवॉल्ट 10 ले फैट मैक्स अरविंद लिनॉक्स हैंड टूल्स अते एक्सेसरीज से $299 या वध स्पेंड करो अते लो फ्री 100 पीस इंपैक्ट रेडी स्क्रू ड्राइविंग बिट सेट विद टफ केस जा VR फ्रेमिंग लेदर पाउच।
4: फ्राइडे सितंबर 11th सवेरे 7 बजे तो लेके शाम 4 बजे तक बॉम टूल्स कैलगरी स्टोर ते जरूर पहुंचो।
3: इस तो इलावा होर भी बहुत सारे टूल्स सेल ते हन, लिमिटेड क्वांटिटीज व्हाइल सप्लाईज लास्ट।
4: DeWalt स्पेशल इवेंट फ्राइडे सितंबर 11th बॉम टूल्स कैलगरी। बॉम टूल्स, बिल्ड ऑन सर्विस, ड्रिवन बाय वैल्यू।
5: इस शनिवार 1 तो 4 बजे तक रेड एफएम होवेगा लाइव ऑन लोकेशन सैडल क्रेस्ट लिविंग ते। विजिट 95 सैडल क्रेस्ट सर्कल नॉर्थ ईस्ट। सी यू देयर।
6: आमी तुम्हाके भालोबाशी।
7: होई मोहब्बत बेशुमार।
8: हम्बल मोशन पिक्चर्स पेश करदे हन सिंह वर्सेस कौर 2।
9: तुसी मां पुत्र ने तो सारा पिंड ही लुट लिया।
8: Starring Gippy Garibal and Shehnaz Gill.
10: Bande jo dar kar diya tha jatt baki.
8: 11 September to tohde needle cinema karan vich.
11: Dushtu,
12: tu dushti.
13: Bande masi de gayi.
14: अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करने के लिए नसीम ज्वेलर्स लाया है अपनी एनिवर्सरी के मौके पर एक मेगा सेल इवेंट। तमाम दुबई के सोने की ज्वेलरी, डायमंड और चांदी के स्टॉक पे ह्यूज डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। आज ही फायदा उठाएं नसीम ज्वेलर्स की मेगा सेल से। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, इजी फाइनेंसिंग की सहूलत भी मुयस्सर है। विजिट अस इन द स्टोर एट नसीम ज्वेलर्स, जैक्सन गेट, कैलगरी नॉर्थ ईस्ट।
15: More music right now.
16: Zabardast hit.
17: Award recognize करता है आपके काम को। अच्छा लगता है, रिकग्निशन होनी भी चाहिए। सबसे बड़ा अवार्ड या रिवॉर्ड खुद के लिए मुझे लगता है, दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन, वो कि जब आपको ये तसल्ली होती है कि आज जो काम किया ना बढ़िया गया है, चाहे वो आपका इवन एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जॉब ही क्यों ना हो, या फिर आप आउटडोर्स रहते हुए काम करते हैं, या फिर चाहे आपका कंप्यूटर के सामने बैठे ही काम करने का है नेचर, लेकिन इतना पता है कि जो करना चाह रहे थे वो तसल्ली से किया है, दैट्स द बिगेस्ट रिवॉर्ड। एनी हाउ, अवार्ड की मैं बात कर रही थी। रानी मुखर्जी को उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इंडियन सिनेमा और लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन जो है विद मुंबई एंड महाराष्ट्र, उसके लिए उन्हें नवाजा गया है राज कपूर स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन अवार्ड एट महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2026 में। और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उन्होंने ये अवार्ड उन्हें दिया। बहुत खास उनके लिए ये मौका है। कुछ फिल्मों के बारे में बात करूँ तो कुछ कुछ होता है, हम तुम, बंटी और बबली, ब्लैक, तलाश, हिचकी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और इन दिनों तो मर्दानी, कितनी सारी उसकी सीरीज ही बन गई हैं। तो रानी मुखर्जी के काम के लिए उन्हें ये अवार्ड जो है वो खास तौर पर दिया गया है। उन्होंने ये अवार्ड लेते हुए मजा साथी महाराष्ट्र फकत एक राज्य ना ही कुछ ऐसा उन्होंने कहा, मुझे समझ तो नहीं है लेकिन मैंने कोशिश की है। मराठी में उन्होंने अपनी बात जो है वो कही, विच मीन्स फॉर मी महाराष्ट्र इज नॉट जस्ट अ स्टेट, महाराष्ट्र इज माई बर्थ प्लेस, इट्स द लैंड वेयर आई बिल्ट माई करियर एंड इट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ.

0: मान लिया रेड एफ एम ट्यून एंड कर लिया और चैनल को भी बता दिया।
1: फ्रेश ग्रोसरी वधिया सामान जित्थों मिले है इको ही नाम सांझा पंजा।
2: एक कीमता 10 सितंबर तक मिलनगियां। वेजी मैरो 99 सेंस नु पाउंड, हरी शिमला मिर्च 99 सेंस नु पाउंड, बीसी वाले टिंडे 199 नु पाउंड, बीसी वाली कौड़ी हरी मिर्च 199 नु पाउंड, 1 केजी नेशनल ब्रांड पिकल्स 399 ईच, 4 पाउंड मूंग दाल 499, 25 पाउंड रेड अनियंस 1899, 50 पाउंड येलो अनियंस 1899।
1: सांझा पंजा ग्रोसरी स्टोर।
3: बच्चे बुजुर्ग औरत जा मर्द गिट्टे गोडे मोडे धोन जा कमर दा दर्द मोच खिच जा होवे एक्सीडेंट दी सट हुन ना घबराओ सीधा मेड प्रो फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर ते आओ।
4: मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होवे वर्क इंजरी या कोई पुराना दर्द होवे फिजियोथेरेपिस्ट जसप्रीत कौर ते जगमीत सिंह तुहाडी रिकवरी विच मदद करदे हन। पंजाबी हिंदी ते इंग्लिश बोलन वाला स्टाफ इंश्योरेंस क्लेम्स तो लेके डायरेक्ट बिलिंग तक हैंडल करदा है। 367 नोलन रिज क्रेसेंट यूनिट 1130 नॉर्थ वेस्ट कॉल 587317
5: मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट लगियां गंभीर सट्टा पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजर्बा है। कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिसदे ओ सचमुच ही हकदार हन। थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन कॉन्टेक्ट अस एट bridgemohan.com।
6: कैलगरी वासियां लई वड्डी खुशखबरी हुण प्राइम हियरिंग क्लिनिक लेके आए ने अल्बर्टा का पहला साउथ एशियन मोबाइल हियरिंग क्लिनिक। हुण ना कोई वेटिंग ना आन जान दी टेंशन, ए तुहाडे घर आके कन्नां दा टेस्ट ते मुफ्त कन्नां दीआं मशीनां प्रोवाइड करदे हन। ते इक गल होर, कंस्ट्रक्शन वीरां ते इंडस्ट्रियल वर्कर्स लई ऑन साइट इंडस्ट्रियल हियरिंग टेस्ट ते कस्टम नॉइज प्रोटेक्शन ईयर मोल्ड्स वी उपलब्ध हन। इन होम ते इंडस्ट्रियल हियरिंग टेस्ट लई कॉल करो प्राइम हियरिंग क्लिनिक इन एपेक्स स्काई मेडिकल क्लिनिक 4037233141 4 3 7 3 1 41।
7: राइट टाइम दा इंतजार कर रहे हो अपने आप नू रोज झूठ बोल के, मेरा काउच तो अजे ठीक ही है पर पता तो थानू भी है हुणे पुराना हो गया, टाइम आ गया हुण अपने पुराने काउच नू बदलन दा।
8: ते नाल ही समा भी है फेयर डील फर्नीचर दी 35वीं एनिवर्सरी सेल दा। 0% इंटरेस्ट 35 महीनियां लई ऑन अप्रूव्ड क्रेडिट। साल दी सब तो वड्डी सेल पूरे जून दे महीने विच, एही है राइट टाइम।
2: फेयर डील फर्नीचर 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
9: हां जी किदा लग्या फिर तुहानू अल्बर्टा?
10: हां जी जगह तां सोहणी है पर जदों दे शिफ्ट होए आ ना फ्रेश वेज नॉन वेज मैरिनेटेड चिकन मीट बहुत मिस करदे आ।
9: लगदा है तुसी गर्जा ब्रोस दे फ्लेवर टेस्ट नहीं किते।
10: गर्जा ब्रो इत्थे हैगा?
9: हैगा नहीं जी, हैगे पूरे कनाडा दा परोसेमंद नाम गर्जा ब्रोस वेस्ट विंड साइमन वैली जैक्सन पोर्ट एंड एडरी विच है। तुसी गर्जा ब्रोस दी सारीयां लोकेशन ते बहुत वधिया कीमतां ते वेज नॉन वेज आइटम्स लै सकदे हो।
11: गर्जा ब्रोस विजिट अ स्टोर नियर यू।
12: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਡ ਐਫ ਐਮ ਲਿਆ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਬਾਈ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ।
13: ਰੈਡ ਐਫ ਐਮ ਦੀਵਾਲੀ ਧਮਾਕਾ
2: ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਸਜੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਊਟਫਿਟਸ, ਜੁਐਲਰੀ, ਗਿਫਟਸ, ਡੈਕੋਰ ਆਈਟਮਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।
12: ਫੈਸਟਿਵ ਫੂਡ ਸਟਾਲਸ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ,
2: ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਮਸਤੀ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਔਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ।
12: ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ।
2: ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਟੂ ਯੋਰ ਸਿਟੀ,
12: ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ।

0: Okay,
1: go. Stay in the know, on the go. Visit redfm.ca to see where you can follow us on the World Wide Web.
2: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $90,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 49 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਮਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ADHD ਸਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਆਦਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ 403-404-3500 403-404-3500
3: ਭਾਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਵੈਨਿਊ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ
4: ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੋ ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਸਮਾਰੋਹ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰੋ
3: ਓਹੀ ਜੋ ਦਿਵਿਆ ਸੂਤਰ ਕੈਲਗਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੈ
4: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉੱਥੇ 50 ਤੋਂ 500 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ 4 ਹਾਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਫੇ ਸਿਰਫ $29 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
5: ਹੋਟਲ ਦਿਵਿਆ ਸੂਤਰਾ ਕੈਲਗਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਕਲਾਸੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲ 368-599-5855 Skyview blinds and shades ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੁੱਕ
6: Skyview shades ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਈਲਡ ਸੇਫ ਬਲਾਈਂਡਸ ਲੋਕਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਡੇ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਵੋ ਕੋਡਲੈਸ ਸੌਫਟ ਪੁਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਗਬੀ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ੇਡਸ ਐਟ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ
5: ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਲੁੱਕ ਵਿਦ ਥੇਅਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਾਲਪੇਪਰਸ
6: ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ
5: ਲੋਕਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਜਾਂ ਵਾਲਪੇਪਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਲਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਕਾਲ 403-714-0416
7: जाना है इंडिया या पाकिस्तान जा घूमना है सारा जहान यूरोप मैक्सिको जा हवाई दा लौना है टूर ता गिल ट्रैवल ते आना जरूर
8: गिल ट्रैवल तो एयर टिकट्स वाजिब रेट्स ते लो मैक्सिको हवाई क्यूबा या कैरेबियन दे वेकेशन पैकेजेस भी ऑफर करते हैं गिल ट्रैवल क्रूजेस दिया बेस्ट डील्स विद इन दे हन
7: जे करनी है दुनिया दी सैर जा वतन नु जान दा करदा है दिल ता करो ना टिल कॉल गिल इंटरनेशनल ट्रैवल
2: 5873914000 जा विजिट गिल ट्रैवल एट सवाना बाजार
9: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਰਗ ਚਾਰਜਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
2: ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ
9: ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਜੀਤ ਲਾ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
2: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਲ 587-602-8966
9: White and Jeet Law. Experience that matters. Results that count.
10: ਵੀਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ
11: ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ IVF ਲਈ ਕੰਸਲਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ
10: ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ
11: ਤੂੰ ਵਰਦਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ
12: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ IVF ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 778-867-0713 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 981440991
5: Celebrating South Asia.
13: One song at a time.
14: Only on Red FM.
15: This is Zabardast Hits on Red FM.
16: प्रोग्राम जबरदस्त हिट्स आप सुन रहे हैं रेड एफएम पर और जाते जाते मैं एक बात करना चाहती हूँ आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है सितंबर 10 को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है सभी ही इस चीज पर ध्यान दें कि सैडनेस उदासी मायूसी ये हमारी जिंदगी में आते ही हैं लेकिन कुछ लोगों को ये इतना ज़्यादा अफेक्ट कर जाती हैं चीज़ें कि वो ना सिर्फ उनके दिल में ये मायूसी घर कर जाती है बल्कि उनके जहन उनके दिमाग उनकी सोच तक पर हावी हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे लम्हे रहे होंगे जहाँ पर कोई ऐसा स्टेप ले लिया जिसकी वजह से वो इस दुनिया से जा चुके लेकिन वो चले जाते हैं उनकी यादें नहीं जाती हैं उन लोगों के लिए जो उनके अपने अजीज हैं उनके पीछे रह जाते हैं जो छूट जाते हैं रिश्ते वो कभी भी नहीं भुला पाते हैं चाहे वो उनके अपने बेटे या बेटी की बात हो उनके पार्टनर की बात हो या उनके पेरेंट की बात हो फिर पीछे कहीं ना कहीं पीछे रहने वालों लोगों के मन में ये एहसास रहता है कि दिल खोलकर बात ही कर लेते या हम उनके लिए टाइम निकाल लेते. सो रीजंस कैन बी वेरियस, बट ऐसा डे ऑब्जर्व करने का एक मकसद ये भी है कि एक तो प्रिवेंट किया जाए, अगर समवन इज स्ट्रगलिंग किसी और से नहीं तो हेल्पलाइन सपोर्ट नंबर्स हैं, उस पर फोन करके आप बात कर सकते हैं. और वो लोग जो हैं वो इस काम के लिए जो आगे से फोन उठाने वाले हैं वो उनको तैयार किया जाता है. सो मैं बताना चाहूंगी, सुसाइड क्राइसिस हेल्पलाइन इज 988. बहुत मेहनत लगाई है ये नंबर लेने के लिए, जिन्होंने काम किया है ये नंबर दिलवाने के लिए, 988. और इसके अलावा उन लोगों के लिए भी जिन्होंने किसी अपने को खोया है, कि जिस किसी ने अपनी जान दे दी हो और वो इस दुनिया से चले गए हों, उन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. सो वी स्टैंड विद एवरीवन जो कि उनकी ज़िंदगी इम्पैक्ट हुई हो किसी के सुसाइड से, या फिर उन लोगों को भी हम याद कर रहे हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट में है और उन्हें, जैसे हमारे कैलगरी पुलिस वाले हैं या और पुलिस सर्विसेज हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब कम्युनिटी में जाकर, उन पर भी तो असर होता है. इसके अलावा लव्ड वंस या जो चले गए या फैमिली मेम्बर्स जिनके लिए डिफ़िकल्ट टाइम्स जो हैं वो हर उस पल आ जाते हैं जैसे ही जहन में ख्याल आता है कि कोई इस घर में रहता था, अब नॉट एनी मोर. सो एक बात याद रखें, अ सिंपल कॉन्वर्सेशन कैन मेक अ डिफरेंस. आप किसी को सुन सकते हैं, सिर्फ सुनना ही है. इसके साथ अब ले रही हूं इजाजत, प्रोग्राम जबरदस्त हिस्स को यहीं पर खत्म करने की. वाइट एंड जीत लॉ वालों का भी मैसेज है आपके लिए कि अगर कोई ऐसा सीरियस चार्ज है जिसकी वजह से आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है या इमिग्रेशन स्टेटस इफेक्ट हो सकता है, इनकी लीगल टीम को क्रिमिनल डिफेंस का बहुत एक्सपीरियंस है, इन्हें कॉन्टेक्ट करें 5876028966 पर. गुरप्रीत इज साइनिंग ऑफ, यू टेक केयर, बाय बाय.

0: यार भुख बहुत लगी आ, अज दा की प्लान आ?
1: मैं कोवेंट्री बैठा, तू किथे?
0: ओ मैं भी इत्थे आ।
1: ओ फिर तां वधिया है, चल सिजलिंग ग्रिल दी दूजी लोकेशन कोवेंट्री हिल्स ते मिलदे आ।
0: गुड आईडिया, उत्थे बहुत वधिया वेज ते नॉन वेज बफे हुंदा।
2: सिजलिंग ग्रिल दी दूजी लोकेशन कोवेंट्री हिल्स ते थर्सडे टू संडे 12:30 to 5 PM तक एंजॉय करो शानदार बफे। एडल्ट्स ले 16.99 अते 3 to 10 years दे बच्चियां ले सिर्फ $8.99 विच। हुन मेन्यू विच है स्पेशल पिज्जा, टेक आउट करो एंड गेट 20% ऑफ। विजिट 790 कोवेंट्री ड्राइव नॉर्थ ईस्ट।
3: Remax Crown de owners Raman Chahal te Happy Dillo to hatta kar 90 dinan vich sell karan di guarantee de sakde han te bahut hi wajib commission charge karde han. Eh marketing layi professional presentation and strong internet advertisement jehe kamyab tareeke apnaunde han jo tuhade ghar nu ghat to ghat samay vich vadh ton vadh kimat vich vechan vich madadgar sabit ho sakde ne. Hor jankari layi call Remax Crown de owners and multi award winning realtors Happy Dillo 4036670012 aur Raman Chahal 4039 2200।
4: अपने परिवार लिए एक भरोसेमंद फैमिली डॉक्टर लाभ रहे हो ता आज ही विजिट करो होली क्रॉस फैमिली मेडिसिन।
5: डॉक्टर एंडी सिंह एमडी इज वेलकमिंग न्यू पेशेंट्स एंड वॉक इन विजिट्स। फैमिली मेडिसिन दे नाल जॉइंट मसल एंड टेंडन केयर, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट, आयरन, एनर्जी ते माइग्रेन इन्फ्यूजन्स, विमेन्स हेल्थ अते होर कई मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल।
4: सेम डे अपॉइंटमेंट्स ते स्टाफ तुहाडी भाषा भी बोलदा है।
5: होली क्रॉस फैमिली मेडिसिन 10601 साउथ पोर्ट रोड यूनिट 101 साउथ वेस्ट।
4: कॉल 4034 750111।
6: ओ यार उधरों फ्लाइट दा टाइम हो ही जांदा ते तू लोकां दे स्नेह सांभी जानी है, है?
7: ना इन्ने दिन हो गए, तुसी पैसे भेजण दा की इंतजाम कीता, पिंड जाके बैठे हो मोठां दी छावे
6: ते तू बैठी नोटां दी छावे। मैं ऑलरेडी ए क्लास फॉरेन एक्सचेंज वाले नमजीत सिंह रंधावा नु कॉल कर चुके हैं। ओ पैसे तां अपने पहुंचण तों भी पहला पहुंच जाने हैं।
8: 24 घंटियां दे अंदर इंडिया नु पैसे भेजण या मंगवाउण लई ए क्लास फॉरेन एक्सचेंज डॉलर ते वधिया रेट ते भरोसेयोग सेवा लई कॉल करो नमजीत सिंह रंधावा नु 4037143326 4037143326। ए क्लास फॉरेन एक्सचेंज।
9: फ्राइडे नाइट थी, मेरे दोस्त ने कहा कि वो मुझे लेने आएगा और हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे। मैं इंतजार करता रहा और फिर एक फोन आया, मेरे दोस्त की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिस गाड़ी ने मेरे दोस्त को टक्कर मारी उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। आखिर लोग शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाते हैं?
10: शराब पीकर गाड़ी चलाने से आप अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अ मैसेज फ्रॉम रेड एफएम।
11: तुसी अपना बिजनेस रातां नूं जाग जाग के खड़ा कीता है, हर एक डॉलर ले मेहनत कीती है, पर जे कल नूं कोई अनहोनी हो जाए की तुसी तैयार हो?
12: जे तुसी कॉन्ट्रैक्टर या जनरल कॉन्ट्रैक्टर हो, रिटेल, लिकर स्टोर, रेस्टोरेंट या किसी होर बिजनेस दे मालिक हो या सिटी विच ट्रक चलाउंदे हो तां कमर्शियल इंश्योरेंस दे वधिया रेट्स लई अज ही ब्रोकर कैनेडा दे अमन बराड़ ते सरबजीत कपूर नाल गल करो, ओ तुहानू बेस्ट रेट्स देणगे।
13: कमर्शियल इंश्योरेंस कोर्ट लई विजिट ब्रोकर कैनेडा ऑफिस मैकनाइट एंड 19th स्ट्रीट दे कॉर्नर ते और कॉल 4033544444।
14: This is Zabberdast Hits on Red FM.

0: इतना फिक्का रात ना फिक्की, ना ही फिक्की चूरी हुई, तेरा रंग उदारा मिलता सारी दुनिया।
1: मैं ना 10 स्टोर को माई है, सामान फिर भी नहीं इकट्ठा होया सारा। अगली बारी आपे जायो, मेरे को कली कली दुकान घूमी जाती।
2: जे तुसी ओके फूड एंड प्रोड्यूस ते गए हुंदे ता एदा कदे नहीं सी कहना, कदी लंगो इधर दी होके ता हो जाएगी ओके ओके।
3: हर्बल प्रोडक्ट्स, हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बर्तन, मिठाइयां, हर तरह दा पूजा दा सामान ते फ्रेश खोया बर्फी। फर्स्ट लोकेशन 3250 60th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट, सेकंड लोकेशन 102 350 75 बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट। कॉल 403-293-1186। ओके फूड स्टोर।
4: सेल सेल सेल, स्टोर क्लोजिंग सेल।
5: जी हाँ, पंजाब फर्नीचर एंड डेकोर बंद होने तो पहला अपना पूरा स्टॉक क्लियर करने लिए दे रहा है अप टू 70% ऑफ एवरीथिंग मस्ट गो। इंडिया तो बड़े बॉक्स बेड्स ते खूबसूरत मंदिरा ते लो फ्लैट 50% ऑफ, नाल ही डेकोर अते रिलीजियस आइटम्स ते मिल रहा है फ्लैट 70% ऑफ। पर जल्दी करो, इना कोल सिर्फ लिमिटेड स्टॉक ही बाकी है। विजिट पंजाब फर्नीचर एंड डेकोर 211076 वेस्ट विंस क्रेसेंट नॉर्थ ईस्ट।
6: ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ।
7: ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੌਬੀ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਸਭ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਾਇਰ ਅਮਾਉਂਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
8: ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਰੇਟਡ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ, ਮੌਰਗੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਓਨਰ ਰੌਬੀ ਅਰੋੜਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 billion ਪਲੱਸ ਐਨੂਅਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਵਾਲੀਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੈਟਰ ਮੌਰਗੇਜ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਕਾਲ 5876125040।
9: कैलगरी तैयार हो जाओ अपनी डिनर नाइट नु अपग्रेड करने लई। तुहाडा अपना पंजाबी चूल्हा लेके आया नवी फाइन डाइनिंग वाइब, सॉफ्ट लाइट्स, मॉडर्न इंटीरियर ते स्वाद जो दिल जित लवे। चाहे डेट नाइट हो, फैमिली डिनर या फ्रेंड्स नाल वीकेंड गैदरिंग, हर पल बनेगा खास। ओही नाम ओही स्वाद, बस एक्सपीरियंस हो गया होर वी क्लासी। आज ही विजिट करो यूनिट 115630 रेडस्टोन ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, रेडस्टोन प्लाजा, पंजाबी चूल्हा, जिथे फाइन डाइन मिले पूरे देसी शाइन नाल। आज ही अपना टेबल रिजर्व करो ते एंजॉय करो न्यू वाइब।
10: रेड एफएम न्यूज इज नेक्स्ट।
11: रेड एफएम न्यूज रूम से अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ मैं हूं सतेंद्र सुकरात। यमन में ईरान समर्थित होती विद्रोही लाल सागर के तट के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी इस बढ़त से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक बाबल मंदेब जलडमरू मध्य पर हुतियों का प्रभाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हुती विद्रोहियों ने कहा है कि सऊदी अरब ने उनके ठिकानों पर करीब 40 हवाई हमले किए हैं। ये हमले हुतियों द्वारा सऊदी अरब के भीतर तेल प्रतिष्ठानों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने के बाद किए गए हैं। इसी बीच ईरान के दक्षिणी सिर्क जिले के कई ठिकानों में प्रोजेक्टाइल गिरने और तटीय क्षेत्र में कई धमाकों की आवाजें सुनाई देने की खबर है। क्षेत्र में जारी संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर बनी हुई है और फिलहाल युद्ध समाप्त होने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखाई दे रहे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी युद्ध अमेरिका में नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के तुरंत बाद समाप्त हो जाएगा। ट्रंप का यह भी कहना है कि युद्ध खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आएगी। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों ने कृषि एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण के बाद प्रिंस खान 9 से 15 सितंबर तक भारत का दौरा कर रहे हैं। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि महामहिम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मिलकर उन्हें खुशी हुई है और उनके पिता दिवंगत आगा खान और विकास प्रयासों में उनके स्थायी योगदान को याद किया। स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई है। प्रिंस खान अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद का दौरा करेंगे जहां उनकी संस्था विभिन्न विकास और सामुदायिक पहल में शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जारी युद्ध के दौरान यूक्रेन को समर्थन देने के लिए कनाडा का धन्यवाद किया है। ज़ेलेंस्की ने कैलगरी में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने अल्बर्टा के बैंफ में जुटे फेडरल कैबिनेट मंत्रियों को संबोधित किया। बैठक से पहले प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा और यूक्रेन आगे भी मिलकर काम करते रहेंगे और यूक्रेन के साथ कनाडा का सहयोग जारी रहेगा।
12: Ukraine when peace comes.
11: दूसरी ओर जेलेंस्की ने कहा कि वह युद्ध की शुरुआत से ही कनाडा द्वारा दिए गए समर्थन के लिए बेहद आभारी हैं। रूस ने वर्ष 2014 में यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, जिसे फरवरी 2022 में पूर्ण पैमाने के हमले में बदल दिया गया। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में पिछले वीकेंड पर भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद तलाश अभियान में एक और शव बरामद किया गया है और इसके साथ ही इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 16 हो गई है। सरकारी मीडिया ने बताया है कि भारी बारिश के कारण सुइचुआन काउंटी के 3 कस्बों में लोगों की मौत हुई है। चक्रवात सॉडेल के चीन के पूर्वी तट पर आने के बाद इलाके में कई दिनों तक तेज बारिश हुई। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी की एक खबर के अनुसार गाओपिंग कस्बे में हुए भूस्खलन में 13 लोगों की हुई है, वहीं जुआन कस्बे में 2 और तांगहू कस्बे में 1 व्यक्ति की मौत हुई बताई गई है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार सुइचुआन काउंटी में 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। काठमांडू में गैस संकट ने अब आम जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया है। राजधानी में खाना पकाने वाली गैस की कमी से परेशान स्टूडेंट्स ने गुरुवार को अपने खाना पकाने के बर्तन लेकर सड़कों का रुख किया। स्टूडेंट्स ने रतन राज्य लक्ष्मी कैंपस के प्रवेश द्वार के बाहर लकड़ी जलाकर चावल और आलू की सब्जी बनाई और खाना तैयार होने के बाद स्टूडेंट्स ने वहीं बैठकर भोजन किया और आसपास मौजूद लोगों को भी खिलाया। ये प्रदर्शन केवल सरकार के खिलाफ विरोध नहीं था बल्कि गैस की कमी के कारण लोगों को हो रही की परेशानी दिखाने का एक तरीका भी था। स्टूडेंट्स ने बताया है कि सरकार लोगों के लिए पर्याप्त खाना पकाने वाली गैस उपलब्ध नहीं करा पा रही है और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों में पिछले महीने गिरफ्तारी के बाद से लंदन में जेल में बंद आपराधिक वकील विजय अग्रवाल पर उत्पीड़न का एक अतिरिक्त आरोप लगाया गया है और ये बात गुरुवार को ब्रिटेन की एक अदालत ने बताई है। अग्रवाल, जिन्होंने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही में भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी का प्रतिनिधित्व किया है, साउथवार्क क्राउन कोर्ट में न्यायमूर्ति नथेलियन रुडोल्फ के समक्ष पेश हुए और उन पर यौन उत्पीड़न के 4 आरोप लगाए गए हैं। उन्हें याचिका और मुकदमे की तैयारी के लिए सुनवाई का सामना करना पड़ा। उनकी सहायक मनप्रीत कौर भी उनके साथ कटघरे में पेश हुई, जिन पर जानबूझकर यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने या उसमें सहायता करने के 2 आरोप हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 1,377 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार प्रभावित इलाकों में अभी भी 5,130 से अधिक लोग लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक चितवन में सबसे ज्यादा 364 शव मिल चुके हैं। इसके अलावा नवलपरासी पूर्व में 228, नवलपरासी पश्चिम में 222 और नुवाकोट में 158 शव बरामद किए गए हैं। अब तक 13,656 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया है। यह आपदा 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के बड़े हिस्से के गिरने से आई बाढ़ के कारण हुई थी। इस बुलेटिन में इतना ही। इसके साथ ही मुझे सतेंद्र सुकरात को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
12: CKYR 106.7 FM Calgary Red FM। बुजुर्गा तो लेके बच्चियां तक हर तरह दिया सेहत समस्यावां दा इलाज है एपेक्स मेडिकल क्लिनिक। हुण इत्थे कन्ना दी जांच लई प्राइम हियरिंग क्लिनिक भी ओपन हो गया है। प्राइम हियरिंग क्लिनिक ते पंजाबी बोलन वाले स्टाफ दे नाल नाल पूरे अल्बर्टा दी पहली फीमेल पंजाबी हियरिंग स्पेशलिस्ट रीत कौर हन, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नाल कन्ना दी जांच करदे हन ते लो इनकम वालियां लई फ्री हियरिंग एड्स भी उपलब्ध हन। क्विक अपॉइंटमेंट लई कॉल प्राइम हियरिंग क्लिनिक 4037233141 4037233141।
13: आ गया नी ओही बिलो टैम टैम आया घर लैण दा ते मोर्गेज करवाउण दा, इस लई इक्को इक भरोसेमंद नाम कॉल GS मान, कर लेना आसान।
12: GS मान नवे घर दी डील ते बिल्डर्स नाल नेगोशिएट करके डिपॉजिट दी 100% गारंटी भी देंगे। रीमैक्स आई रियलिटी इनोवेशन एंड मोर्गेज अलायंस टीम दे GS मान, कॉल 587-777-7000 587-777-7000 या गो टू माई फर्स्ट होम इन कैलगरी CA।
14: Skyline Furniture, जो के 1991 तो प्रीमियम क्वालिटी फर्नीचर तैयार करके बेचदा आ रहा है। वड्डे वड्डे रिटेल स्टोर भी एथो फर्नीचर खरीदे हन। तो हाडे लई खुशखबरी, हुण तुसी भी अपनी पसंद दा फर्नीचर खरीदो सिद्धा Skyline Furniture तो।
15: कस्टम मेड सोफास, सेक्शनल्स, मैट्रेसेस ते बॉक्स बेड्स, अपनी पसंद दा फैब्रिक, कलर, फोम ते स्टाइल चुनो अते फर्नीचर बनवाओ बिल्कुल अपनी चॉइस मुताबिक। Skyline Furniture नाउ ओपन टू पब्लिक। विजिट 1817 54th स्ट्रीट साउथ ईस्ट। कॉल 4032367625।
16: फ्राइडे नाइट थी, मेरे दोस्त ने कहा कि वो मुझे लेने आएगा और हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे। मैं इंतजार करता रहा और फिर एक फोन आया। मेरे दोस्त की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिस गाड़ी ने मेरे दोस्त को टक्कर मारी उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। आखिर लोग शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाते हैं?
17: शराब पीकर गाड़ी चलाने से आप अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अ मैसेज फ्रॉम रेड एफएम।
18: ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊਅਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਧੂਗੀ।
19: ਰਿੰਪੀ ਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਰੌਬੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
20: ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਡਡ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਰਗੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਰੇਟਡ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦੇ ਓਨਰ ਰੌਬੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 5876125040।

0: दिन की वो खबर जो तुहाडे लई जाननी जरूरी है, तुहाडी वो हर गल जो सरकार दे कन्ना तक पहुंचनी जरूरी है, कुछ खास मुद्दियां ते तुहाडी राय।
1: This is the evening show.
2: Good evening, CKYR 167 Red FM Calgary ते The Evening Show सुन रहे सारे स्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ तुहाडा होस्ट मनप्रीत सिंह। इस शो दे विच आपां गलबात करदे हां जी चलंत मामलिआं बारे, दिन भर दीआं जरूरी खबरां बारे ते उहनां मुद्दिआं ते विशिआं बारे जिन्हां नाल तुहाडा सिद्धा सरोकार है। समा हो चलिया जी शाम दे 7:06 ते बाहर तापमान है जी 11°C ते फील लाइक 9°C, 9° दे करीब इस समय जिहड़ा तापमान है जी वह महसूस हो रहा। तो आउण वाले समय की जे गल करिए आउंदे घंटिआं दे विच जिहड़ा तापमान है जी काफ़ी डिगण वाला है, 5°C का तापमान जिहड़ा है जी अज हो जाना है रात नूं, ते फील्स लाइक हो जाना 2°C। जदों इस तरह के तापमान साढ़े सामने आउंदे ने तां लगदा यार भी विंटर्स काफ़ी नेड़े ने। पर जे आपां गल करिए आउण वाले दिनों की, तो कल नूं जानी कि दिन शुक्रवार नूं 40% मीह की संभावना है, शनिवार नूं 30% मीह की संभावना है, तो ऐतवार नूं पूरे मीह पै रहा, ऐतवार नूं मीह पै रहा जी 70%। तो आने वाले जे हफ्ते की गल करिए मंडे ट्यूजडे वैनसडे 60-40% जिहड़ा मीह है वह दिखाई दे रहा है, तो पत्तियां दे रंगां तों कुदरत तों सानू ये अंदाज़ा लग रहा है कि इस बार जिहड़ा पतझड़ दा मौसम है वह जल्दी आउण वाला है, तो असी सारे ही गेयर अप हो रहे हैं फॉल सीजन दे लई। तो आने वाले समय दे विच जिहड़ा तापमान है जी वह 12-15°C दे करीब रहने की संभावना दिखाई जा रही है। अज के प्रोग्राम नूं शुरू करन तों पहलां इसकी रूपरेखा तुहाडे नाल सांझी कर लैंदे हां जी। जिवें कि तुसीं जाणदे हो पहले सैगमेंट दे विच आपां गलबात करदे हां कैलगरी शहर दीआं खबरां दी, अपने शहर दे विच जो भी जरूरी वापरदा है वड्डा वापरदा है वह तुहाडे नाल सांझा कीता जांदा है, ते कुछ क जरूरी जिहड़े पॉइंट ने वह तुहाडे सामने रखे जांदे ने, ते कुछ क जरूरी खबरां दा विश्लेषण तुहाडे अगे कीता जांदा है। उस तो बाद साढ़े दूसरे सैगमेंट दे विच असीं पेश करदे हां जी अलबर्टा ते होर सूबा पदरी खबरां। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ते प्रीमियर डैनियल स्मिथ दे दफ्तरां तों असीं खबरां लैंदे हां, ते जरूरी खबरां तुहाडे नाल सांझियां कीतियां जांदियां ने जी। ते उस तों अगले सैगमेंट दे विच साडा कॉल इन सैगमेंट जिहड़ा आ उह शुरू हो जांदा है, जिहदा मतलब है कि तुसीं सानूं कॉल कर सकदे हो जी। साडा नंबर नोट कर लवो 403-286-1067 403-286-1067 इस नंबर दे उत्ते करनी है तुसीं कॉल, तो साढ़े नाल अपने जरूरी जिहड़े ओपीनियन ने वह सांझे करने ने जरूर। उस तो बाद साढ़े नाल पंजाब ते दिल्ली दरबार दीआं ताज़ा खबरां लैके जुड़ते हैं पंजाब तो साढ़े रिपोर्टर साथी कुलविंदर सिंह जी। कुलबीर जी सत श्री अकाल, ते खबरां दा जिहड़ा आगाज़ है जी करन लगे हाँ। कैलगरी पुलिस ने अज एक नवा जिहड़ा पायलट प्रोग्राम है वह शुरू किया है, जिदे विच उन्होंने कहा कि जिहड़ियां एमरजेंसी कॉल्स ने उन्हां दा होर तेजी नाल ते होर सेफ तरीके दे नाल जवाब देने लई उन्होंने अज 90 दिनों का नवा जिहड़ा ड्रोन एज फर्स्ट रिस्पोंडर, भी ड्रोन की जिहड़ी वरतों है एज ए फस्ट रिस्पोंडर दे लई उसका पायलट प्रोग्राम जिहड़ा अज अज शुरू किया। कैलगरी पुलिस सर्विस मुताबिक 10 सितंबर तो यानी कि अज तो 2 जिहड़े स्काईड्यू X10 ड्रोन ने इन्हां नूं शहर के नॉर्थ ईस्ट ते साउथ ईस्ट हिस्सों के कुछ खास जिहड़ियां एमरजेंसी कॉल्स ने उन्हां दे लई वरत्या जाऊगा। जिथे तुसीं एमरजेंसी कॉल करोगे उत्थे पहलां जिहड़े ड्रोन ने ये उड़ के जाणगे। अच्छा, जदों पुलिस नूं कोई कॉल मिलेगी तो जिहड़ा एक जिहड़ा ऑफिशियल होगा जिहड़ा ड्रोन चला रहा होगा अधिकारी वह ड्रोन नूं घटना वाली थां ते भेजूगा। कुछ क मामलों के जिहड़ा ड्रोन आ वह पुलिस अधिकारियों तो पहलां भी मौके पर पहुँच सकता है, तो जिहड़ी लाइव जिहड़ी एरियल वीडियो है उस पूरी घटना स्थान की वह पुलिस नूं वह लगातार ड्रोन जिहड़ा आ वह भेजदा रहूगा। इहदे नाल अफसरां नूं यह समझण च मदद मिलेगी कि उत्थे लोग किन्ने ने मौके वारदात ते ते उन्हां कोल कोई हथियार जां कोई होर खतरा तां नहीं, ते मौके ते पहुँचण तों पहलां उन्हां नूं कीड़ी जिहड़ी स्ट्रैटेजी आ वह वरतनी चाहीदी है। इस तरह के तरीकों के नाल जिहड़ा ड्रोन सिस्टम है नवा कैलगरी पुलिस सर्विस वरतन जा रही है, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਇਹ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਓਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜਾਮ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਾ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ,

0: इश्क ना फिका रात ना फिकी ना ही फिकी चूरी हुई तेरा रंग उदारा मिलता सारी दुनिया गूढ़ी होती.
1: You are listening to
2: CKYR 106.7 FM.
3: This is Red FM Calgary.
4: सिमी तेरी सिस्टर किथे जॉब कर दी है?
5: की दसाली ना, उदा कार एक्सीडेंट हो गया सी, बैक पेन करके ओनू जॉब छड़नी पई, कि तो आराम ही नहीं आ रहा.
4: तू मैनू पहला क्यों नहीं दसिया? हुणे टैराडेल फिजियोथेरेपी ते कॉल करके ओदी अपॉइंटमेंट बनवा. ओ एक्सीडेंट इंजरीज दा बहुत वधिया ट्रीटमेंट करदे ने, नाले इंश्योरेंस नाल भी डायरेक्ट डील करदे ने.
6: टैराडेल फिजियोथेरेपी दे फिजियोथेरेपिस्ट जसप्रीत कौर ते जगमीत सिंह मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरीज अते सारियां इंजरीज ट्रीट करदे ने. कोप प्लाजा च टैराडेल फिजियोथेरेपी मसाज एंड वेलनेस सेंटर. कॉल 403-475-7506.
7: जेकर तुहानू किसे कार एक्सीडेंट विच डिगण करके एयरप्लेन विच जां कोई होर सट लगी है, ता येंको पॉपोविक सिद्धू दी लॉयर्स दी टीम तुहानू तुहाडे हक दी सेटलमेंट दवाउण च मदद कर सकदे हन. येंको पॉपोविक सिद्धू दे लॉयर्स इंश्योरेंस क्लेम्स तुहाडे लई आसान बना दिंदे ने. ए फीस के सेटलमेंट दे विचों ही चार्ज करदे हन. अपने क्लाइंट्स नू मुकम्मल ते तसल्ली बख्श सर्विस देण लई येंको पॉपोविक सिद्धू नू 2014 तों हुण तक लगातार कंज्यूमर्स चॉइस अवार्ड नाल नवाजा गया है. अज ही हरमन सिद्धू, डेविड येंको, जदीप संधू नू कॉल करो 403-262-0262.
8: कैलगरी एरिया विच घर खरीदना जा बेचना चाहुंदे हो, ता ट्रस्ट अते सही गाइडेंस दे नाल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है.
9: टा रियल्टी ग्रुप दे गुरमीत अते हरमन टा दे कोल 40 साल तो भी वध दा रियल एस्टेट एक्सपीरियंस है, जो कि इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी अते रियल रिजल्ट्स तो बढ़िया होया है.
8: ए तुहाडी रिक्वायरमेंट समझ के तुहाडे लई बेस्ट ऑप्शन लभ के दिंदे हन. चाहे तुसी फर्स्ट टाइम होम बायर हो जां तुसी प्रॉपर्टी विच इन्वेस्ट करना चाहुंदे हो, ता अज ही कॉल करो गुरमीत टा 403-667-2754 जां हरमन टा 403-401-2549.
10: ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋ. ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਨੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ qualitytransmission.com ਤੇ.
11: ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ. ਵਿਜ਼ਿਟ 5100 ਹੁਬਾਲਟਾ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਔਰ ਕਾਲ ਪਾਲੀ ਵਿਰਕ 403-228-0000.

सनमपुरी एंड नीति मोहंदी आवाज के विच बहुत ही खूबसूरत ट्रैक तुसी सुनिए सीके वाई आर 106.7 एफएम कैलगरी ते एंड तुसी सुन रहे हो जी प्यार ते रंग मेरे यानी द पेका दे नाल 808 हो चुके ने बाय द स्टूडियो क्लॉक एंड बहुत बहुत स्वागत है थोड़े सारे दा वंस अगेन हैप्पी हैप्पी थर्सडे जी उदे नाल नाल हैप्पी अर्ली इवनिंग दिन सोना चला गया है एंड शाम भी उन्नी ही खूबसूरत रहेगी मौसम तो बहुत सोना सोना है 10 डिग्री है जी इस वक्त टेम्परेचर विद क्लियर स्काई बट लगता है कि क्लाउडी भी हो सकता है सो जी जो सोना सोना मौसम हो सोने सोने गाने वो भी थ्रोबैक सॉन्ग्स क्योंकि थर्सडे वाले दिन खासकर थ्रोबैक गाने होंगे वो गाने जो असी हर दिन तो नहीं सुनते लेकिन जिस दिन भी सुनिए तो असी यादों के चले जाने सो हिंदी तो पंजाबी दोनों ही गाने प्ले किए जाएंगे यानी बॉलीवुड के विचों है बाग कमाल गाने यानी 90s के सुपर डुपर हिट गाने बॉलीवुड के विचों है तो जी फिर असी 2000 के गाने किदा भुला दिए पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने भी बहुत सोहने सोहने गाने दिए हैं सुपर रोमांटिक ट्रैक्स सो बिल्कुल अज की प्लेलिस्ट रेडी है पर तुम सारे कितने रह गए 4032861067 से सेफली कर सकते हो जी टेक्स्ट गाने दे नाल नाल हुंदी एक शायरी सो आज दी शायरी बड़ी कमाल दी है ओ हुंदा है ना कोई इंसान अपने वालों बेस्ट करे रिश्ते दे विच लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन दूसरा इंसान कदर ही ना पावे सो फिर भी जिन्हें रिश्ते दे विच उन्हें पसंद दिता हुंदा ना उन्हें पता हुंदा है कि मुड़ के तो वापस आना ही आना है बस होते है इसे फिर तो है जी आज की शायरी शायर ने बड़ा ही खूबसूरत लिखा है बट की लिखा है ये थोड़ा जा इंतजार करना पड़ना फिलहाल जी नेक्स्ट वाला गाना बिल्कुल रेडी है परदेश फिल्म दे विच आ रहा है कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज मेरी महबूबा।

0: for news, music, punch and more.
1: यार प्रोजेक्ट तो वड्डा मिल गया पर कॉन्ट्रैक्टर कहंदा पहला कमर्शियल जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस दिखाओ।
2: फिर फिकर किस गल दी, रोमी सिद्धू इंश्योरेंस नु कॉल कर,
1: उन्हां कोल कमर्शियल इंश्योरेंस भी है।
2: बिल्कुल, कमर्शियल जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, कमर्शियल ऑटो, होम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस ते हेल्थ बेनिफिट्स सब कुछ इको थां ते।
3: अपने बिजनेस की सुरक्षा लई चुनो रोमी सिद्धू इंश्योरेंस, भरोसे मन सेवा अते 25 सालां तों वध दा तजुर्बा। कॉल करो 403-568-4330 या विजिट 217-4851 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: हर साल की तरह इस साल भी अगस्त महीने वाली मशहूर सेल लेके आ गया है कैलगरी बेस्ट बाय फर्नीचर। जबरदस्त डील्स दे सुपर सेविंग्स दे नाल
5: मैट्रेसेस सिर्फ $60 तो शुरू, डाइनिंग टेबल सिर्फ $199 तो शुरू, सेक्शनल सोफास सिर्फ $249 तो शुरू, अते हर परचेज दे नाल लकी ड्रॉ भी जितो, टॉप ब्रांड्स प्रीमियम क्वालिटी।
4: इस करके वेट ना करो, अज ही विजिट करो कैलगरी बेस्ट बाय फर्नीचर, 4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव, यूनिट 308 नॉर्थ ईस्ट। कॉल 403-250-6661।
6: दंदा दी प्रॉब्लम मतलब डाइट खराब,
7: टोटली
6: फैमिली च एक जन दा भी दंद दुखे तो सारे परेशान,
7: टोटली
6: इनविजिलाइन एंड ब्रेसेस लई 3D टेक्नोलॉजी होवे,
7: टोटली
6: ओ हां पर कोई डेंटल क्लिनिक ता सजेस्ट कर,
7: टोटली डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक्स दे डॉक्टर तरुण मेहरा कोल 25 साल तो वड्डा एक्सपीरियंस है। क्राउन्स फिलिंग, डेंटल क्लिनिक, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, ब्रेसेस एंड इनविजिलाइन। दंदा दी कोई भी प्रॉब्लम कॉल टोटली डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक्स 403-278-2945। लो कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रिक टूथब्रश और डेंटल ब्लीचिंग, कंडीशंस अप्लाई। यूनिट 120 20 सैडलस्टोन ड्राइव नॉर्थ ईस्ट, ओपन 7 डेज।
8: Stay tuned to Pyar de Rang, only on Red FM.

अमरिंदर गिल की आवाज के बहुत ही खूबसूरत ट्रैक तुमने सुनिया CKYR 106.7 FM कैलगरी ते एंड दिस इज योर जी प्यार ते रंग मेरे अनिंद पिका दे नाल 8:22 हो चुके ने भाई तो स्टूडियो क्लॉक एंड बहुत बहुत स्वागत है जी थारे सारे दा। सो थ्रोबैक सॉन्ग्स दे नाल नाल हुंदी है एक शायरी भी। सो अज दी शायरी बड़ी ही कमाल दी है। ओ हुंदा है ना जदों असी टाइमली किसी रिलेशनशिप दी या किसी रिलेशन दी किसी रिश्ते की कदर ना पाइए फिर सानू वक्त ना सिखा देंदा है। एंड दैन जो असी फिर उस रिश्ते दे विच वापिस आने तो यह हुण डिपेंड करता है कि वह इंसान चाहता है कि असी वापिस आईए या ना आईए। बस इसे फील नू अज दे शायर ने बड़ी खूबसूरती दे नाल बयान किया। सो जिस विच बहुत सारे जो हुंदे ने प्यार करन वाले चाहण वाले सो उस विच जिहड़ा एक्चुअल दे विच जिहड़ा कदरदान हुंदा है कदी कदी उहनू भुला दिता जांदा है ना। बस जी उस उते है अज दी शायरी। सो शायर कहंदे ने अभी जमाने की चमक है उसकी आंखों में, अभी जमाने की चमक है उसकी आंखों में। यह है पहली लाइन एंड बाकी दी शायरी तुसी करनी है कंप्लीट एंड सेफली टेक्स्ट कर देना है 4032861067 ते। एंड नेक्स्ट वाला गाना ओ सुपर डुपर हिट सॉन्ग एंड जिस विच जी शरीमान साहब कहंदे ने कि बस कदी गुलाब नहीं मिलिया। वैलेंटाइन डे ते खासकर यह इदा दे गाने जरूर सुने जाते से 90s 2000 दे एंड बिल्कुल यह गाना सुपर डुपर हिट रहा। सो सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक एंड सेफली तुसी टेक्स्ट करना है आज दी शायरी कंप्लीट करके अभी जमाने की चमक है उसकी आंखों में, अभी जमाने की चमक है उसकी आंखों में। यह पहली लाइन एंड बाकी दी शायरी तुसी करनी है कंप्लीट एंड सेफली टेक्स्ट करना है 4032861067 ते। फिलहाल सुनते हैं नेक्स्ट वाला गाना शरीमान दी आवाज दे विच गुलाब।

0: जॉब दा स्ट्रेस घर दा काम मेनू बच्चियां नूं पढ़ाउण दा तां टाइम ही नहीं मिलदा तुसीं किवें मैनेज करदे हो
1: मैं तां अपने दोवें बच्चे एज ही ट्यूटरिंग भेजदी हां जो कैलगरी विच 15 सालां तों अपना कोचिंग सेंटर रन कर रहे ने ओह ग्रेड 1 तों यूनिवर्सिटी लेवल तक दीआं अल्बर्टा करिकुलम अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड करदे ने पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग अते कैनेडियन एक्सपीरियंस टीचर
0: फिर तां फीस बहुत हाई होणी है
1: ना ना अफोर्डेबल फीस है बल्कि सिबलिंग डिस्काउंट भी अवेलेबल है
2: वधेरे जानकारी लई कॉल एज ही ट्यूटरिंग एट 403-400-4756 और विजिट 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट एज ही ट्यूटरिंग
3: भाई क्यों ना आपा भी वड्डा प्लॉट लेके वड्डी बिल्डिंग या घर बना लिए
4: पर कंस्ट्रक्शन दी मॉर्गेज असी कित्थों लवांगे
3: तुहानू नहीं पता रॉबी रोड़ा पाजी काफी इनर सिटी बिल्डर्स होम डेवलपमेंट अते कमर्शियल लोन्स करदे रहे
5: पूरे शहर विच नंबर 1 रेटेड ब्रोकरेज मॉर्गेज कनेक्शन दे ओनर रॉबी अरोड़ा नु अज ही कॉन्टेक्ट करो अपने हाई वॉल्यूम ब्रोकरेज एक्सपर्टीज अते CMHC MLI सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन दे नाल ए तुहाडे अगले प्रोजेक्ट लई वधिया लोन ऑप्शंस दवा सकदे ने कॉल 5876125040
6: होर किन्ना पिछे करा
7: आड़ दे आड़ दे आड़ दे
6: ओयो रब्बा ठोक दी मेरी गड्डी
7: ओहो ओ कोई नहीं फिक्स हो जू
6: एवी फिक्स हो जू पहला अर्गी थोड़ी बन जू
7: ओ यार मोरेन रोड ते अपने पंजाबी भाइयां दी फिक्स ऑटो ते जाई ऑटो बॉडी दा शानदार काम करदे आ गड्डी तेरी बिल्कुल नवी वर्गी हो जू
8: फिक्स ऑटो कैलगरी मोरेन रोड ते हरेक मेक एंड मॉडल दी गड्डी दी ऑटो बॉडी दा काम लेटेस्ट इक्विपमेंट नाल कीता जांदा है हेल डैमेज रिपेयर ते सारी इंश्योरेंस कंपनीज नाल डील करदे ने विजिट 720 मोरेन रोड नॉर्थ ईस्ट कॉल 403-273-8889 फिक्स ऑटो कैलगरी
9: हुन है समा अपने सपनिया दा घर खरीदन दा सैडल क्रेस्ट लिविंग ते इस शनिवार 1 to 4 PM तक रेड FM लाइव ऑन लोकेशन होवेगा सैडल क्रेस्ट लिविंग ते आओ अते इना दे शोरूम्स वेखो स्पेशल मूव इन पैकेजेस बारे पता करो अते इस मौके रिफ्रेशमेंट्स भी एंजॉय करो
10: विजिट यूनिट 101-95 सैडल क्रेस्ट सर्कल नॉर्थ ईस्ट कैलगरी क्लोज्ड ऑन फ्राइडेज सैडल क्रेस्ट लिविंग वेयर होम मीट्स कम्युनिटी
11: हां जी किद्दां लग्या फिर तुहानू अल्बर्टा
12: हां जी जगह ता सोहणी है पर जदों दे शिफ्ट होए आ ना फ्रेश वेज नॉन वेज मैरिनेटेड चिकन मीट बहुत मिस करते आ
11: लगदा है तुसी गर्चा ब्रोस दे फ्लेवर टेस्ट नहीं किते
12: गर्चा ब्रो इत्थे हैगा
11: हैगा नहीं जी हैगे पूरे कनाडा दा परोसेमंद नाम गर्चा ब्रोस वेस्ट विंड साइमन वैली जैक्सन पोर्ट एंड एडली विच है तुसी गर्चा ब्रोस दी सारीयां लोकेशन ते बहुत वधिया कीमतां ते वेज नॉन वेज आइटम्स ले सकदे हो
13: गर्चा ब्रोस विजिट अ स्टोर नियर यू
14: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀਰਪਾਲ ਢੱਟ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਕੈਲਗਰੀ EMS ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਲਓ
15: ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ 8257600983 ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ YYC Home Care Services.ca
16: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਡ FM ਲਿਆ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਬਾਈ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ
17: ਰੈਡ FM ਦੀਵਾਲੀ ਧਮਾਕਾ
18: ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਸਜੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਊਟਫਿਟਸ ਜੁਐਲਰੀ ਗਿਫਟਸ ਡੈਕੋਰ ਆਈਟਮਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
16: ਫੈਸਟਿਵ ਫੂਡ ਸਟਾਲਸ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ
18: ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਸਤੀ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਔਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ
16: ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
18: ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਟੂ ਯੋਰ ਸਿਟੀ
16: ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ दिल या दिमाग वाइब या वैल्यूज दोस्ती या प्यार की चुना यार
18: जानो ओनली ऑन प्यार दे रंग

8:35 by the studio clock and बहुत बहुत स्वागत है जी 10:30। सो आज की शायरी जड़ी हैगी है अभी जमाने की चमक है उसकी आंखों में, अभी जमाने की चमक है उसकी आंखों में, ये है पहली लाइन एंड बाकी की शायरी तो करनी है कंप्लीट एंड सेफली टेक्स्ट कर देना है 4032861067। सो हिमांशु जी ने अपनी शायरी शेयर कर देती है, हनी जी की भी शायरी आ चुकी है एंड मोहित जी ने भी अपनी शायरी शेयर कर देती है। सो इन्हों की शायरी वाल जाने तो पहला बहुत बहुत स्वागत है थोड़े सारे का एंड जिन्हों के टैक्स मैसेजेस आए ने जी उन्होंने का भी स्वागत करना बनता है। सो राजा जी बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा, वेरी गुड इवनिंग जी हिमांशु जी, अ वेरी गुड इवनिंग जी, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा भी हनी जी। हेलो जी, हेलो, मैं बहुत वधिया उम्मीद कर दिया तुसी भी बहुत वधिया होंगे एंड मोहित जी थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है एंड ऑफ कोर्स वेलकम ऑन सारे दा जो इस वक्त मैंने सुन रहे ने। सो जी अभी जमाने की चमक है उसकी आंखों में, ये पहली लाइन एंड बाकी दी शायरी तुसी करनी है कंप्लीट। सो हिमांशु जी कहंदे ने अभी जमाने की चमक है उसकी आंखों में, अभी उसने मेरी तरह खुद को खोया नहीं। उफ क्या बात है जी, क्या बात है। वैसे ये पॉजिटिविटी दे विच भी शायरी बन जाती है, जब अस कहने ना जमाने की चमक, इट मीन्स कि हाँ कि वो इंसान जड़ा उम्मीद एंड होप उत्ते है एंड कभी कभी जमाने की चमक ये भी होंगी है कि जो असली रिश्ते हैं ना उन्होंने झुठला के जो झूठे रिश्ते हैं ना उन्होंने इंपॉर्टेंस दी जाए। सो दोनों ही वेज के नाल ये फीलिंग जाती है। सो हनी जी की है नेक्स्ट वाली शायरी, कहते हैं अभी जमाने की चमक है उसकी आंखों में, अभी वो शख्स मोहब्बत को जिंदगी समझे। उफ क्या बात है जी, क्या बात है। लेकिन हाँ सच्ची मोहब्बत हो तो चंगी गल है, तो जे एवं दिखावे दी हो फिर तो समझना ही है बस। अदरवाइज लेसन तो लाइफ लेसन तो मिल ही जाना है। एंड मोहित जी की शायरी वाल चलते हैं। मोहित जी कहते नहीं अभी जमाने की चमक है उसकी आंखों में, अभी तो वक्त ने उसका चेहरा पढ़ा नहीं। लाइफ दी आर रियलिटीज। सो जिंदगी बहुत सारे लेसन सानू सिखा जाती है, सारी मासूमियत चली जाती है बस जी। उसे फील से बड़ा ही खूबसूरत शेर जो मोहित जी ने लिखा है, थैंक यू सो मच। एंड बाकी तो शायर सोच रहे हैं, बिल्कुल सोचो एंड सेफली टेक्स्ट करना है 4032861067। फिलहाल सुनते हैं जी नेक्स्ट ट्रैक, अगला वाला गाना बड़ा ही खूबसूरत है, सिंग इज किंग फिल्म दे विच राहत फतेह अली खान एंड श्रेया घोषाल दी आवाज दे विच थेरी और कमिंग अप नेक्स्ट।

0: Hey, what's happening?
1: Join the discussion.
2: Hello.
1: Find us on Twitter at Red FM Calgary.
3: यार मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, गल ही नहीं सुनता, फोकस नहीं करता, ते कोई काम नहीं करता।
4: मेरी कहानी भी पहला यही सी, फिर मैं अपने बच्चे नू फ्यूलिंग ब्रेन्स एकेडमी भेजना शुरू कीता।
3: अच्छा,
4: ओना दे यूनिक प्रोग्राम 6 हफ्तियां तो 6 सालां तक दे बच्चियां लई ने, एकेडमिक्स दे नाल नाल पर्सनल डेवलपमेंट ते डिसिप्लिन ते भी फोकस करदे ने, बच्चे दी पूरी डेवलपमेंट।
5: फ्यूलिंग ब्रेन्स एकेडमी, जिथे लिटिल माइंड्स बिल्ड बिग फ्यूचर्स। टूर बुक करन लई विजिट fuelbrains.ca और कॉल 4032580498।
6: ट्राई को पेश करता है एन ओल्ड कर दी रियल लाइफ दे नाम ऊपर हॉल विच ओवरटाइम हॉकी खेडन दे नाम ते उना डॉग्स दे नाम जो तुसी 3 कमरे दूरों भी वॉक स्पेल करो सुन लेंदे ने ते उना डिनर पार्टीज दे नाम जिथे स्मोक अलार्म भी एम्बियंस दा हिस्सा हुंदा है।
7: I think it's done.
6: Real life हमेशा शांत, साफ सुथरी या परफेक्ट नहीं हुंदी। ते इस करके तुहाडा घर रियल लाइफ लई बनिया होना चाहिदा, इंक्लूडेड अपग्रेड्स दे नाल ते ट्राइको होम्स दी हर बेटर क्वालिटी ऑल अराउंड। विजिट ट्राइकोहोम्स.com।
8: मैं थोड़ा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन, पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट्स लगियां गंभीर सट्टा, पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजर्बा है। कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रिहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करते हैं जिसते वो सचमुची हकदार हैं। थोड़ा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन, कॉन्टेक्ट अस एट bridgemohan.com।
9: फार्मासिव मार्टिनडेल एंड जेनेसिस हुन एक नवे नाम नाल तुहाडी सेवा विच हाजिर है। जेनेसिस फार्मेसी, नाम नवा है पर ओही जाने पहचाने चेहरे, ओही अपनापन अते तुहाडी सेहत लई ओही खास देखभाल। तुहाडियां मेडिसिंस तो लेके तुहाडी रोजाना सेहत दियां लोड़ां तक इन्हां दी टीम तैयार है। कंपाउंडिंग मेडिसिंस कंडिया विच तैयार कर देंगे अते फ्री सेम डे डिलीवरी अवेलेबल। 3 locations तुहाडी सेवा विच, जेनेसिस फार्मेसी मार्टिनडेल, जेनेसिस सेंटर एंड कॉर्नरब्रुक, 4th location कमिंग सून इन कॉर्नर मेडोज। तुहाडी अपनी जेनेसिस फार्मेसी।
10: आमी तुम्हाके भालोबाशी।
11: होई मोहब्बत बेशुमार।
6: हम्बल मोशन पिक्चर्स पेश कर दे हन सिंह वर्सेस कौर 2। तुझे
12: मां पुत ने तो सारा पिंड ही लूट लिया।
6: स्टारिंग गिप्पी गरेवाल एंड शहनाज गिल।
13: बंदे जो डर कर दिया था जट बाकी।
6: 11 सितंबर तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
14: दुष्टू
15: तू दुष्टी
16: पिंड मासी दे गई जी।
17: यार मेरी बेटी दा बर्थडे आ रहा है, मैं उन्हें कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहनी हां जो उसका हर दिन स्पेशल बनावे।
18: फिर ता तेनू कोहिनूर ज्वेलर्स ते जरूर विजिट करना चाहिदा, असी ता उत्थे ही जाने हां। उन्हां कोल हर ओकेजन लई गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड बार्स ते कॉइंस ने जो तुहाडे हर मौके नूं मेमोरेबल बना देंगे।
19: अपनी यादां नूं कोहिनूर ज्वेलर्स दे नाल सजाओ। ए गोल्ड बाय, सेल एंड ट्रेड भी करदे ने। विजिट करो यूनिट 1005 5075 फाल्कन रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट, कोहिनूर ज्वेलर्स एंड डायमंड सेंटर, प्राउडली सर्विंग यू सिंस 1975।
20: Celebrating South Asia,
21: one song at a time.
22: Only on Red FM.
23: Keep listening to Pyar De Rang on your favorite Red FM.

प्रभगिल दी आवाज दे विच बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक, बहुत ही सोहना सोहना गाना तुसी हुणे सुनिया सीकेवाई और 106.7 रेड एफएम कैलगरी ते, एंड तुसी सुन रहे हो जी प्यार दे रंग मेरे यानी दीपिका दे नाल। 8:49 हो चुके ने भाई, तो स्टूडियो क्लॉक एंड समा हो गया शो नु इथे वाइंड अप करन दा। जांदे जांदे बड़िया ही खूबसूरत बहुत सोहनिया सोहनिया शायरीज भेजिया हुई ने। चरणजीत जी ने दो शायरीज भेजिया ने एंड अमरजीत जी ने भी दो शायरीज भेजिया हुई ने, तो इन्हां दे शेर वल चलदे हां। सो चरणजीत जी कहंदे ने, अभी जमाने की चमक है उनकी आंखों में, अभी जमाने की चमक है उनकी आंखों में, अभी हकीकत से उसका रास्ता नहीं हुआ। उफ, दैट्स ट्रू, सच्चाई तो काफी दूर है जे। एंड दूसरी वाली शायरी है, कहते हैं, अभी जमाने की चमक है उनकी आंखों में, दिन ढलने दो वो लौट कर यहीं आएंगे। क्लोज क्लोज है काफी, जो कि ओरिजिनल शायरी है, बट बड़ी खूबसूरत भेजी है। थैंक यू सो मच चरणजीत जी। सो अगली वाली शायरी है जो कि अमरजीत जी ने शेयर की थी, कहते हैं, अभी जमाने की चमक है उसकी आंखों में, अभी जमाने की चमक है उसकी आंखों में, तभी तो किसी और के कहने पे छोड़ गई। एंड दूसरी शायरी है, अभी जमाने की चमक है उनकी आंखों में, अभी वो बेखबर है उनके इरादों से, वक्त पर्दा उठाएगा उनके दारों से, जिनकी हकीकत से वो आज भी अनजान है, अभी जमाने की चमक है उनकी आंखों में। वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ा है खूबसूरत, बहुत सोनी सोनी शायरी भेजी हुई है। एंड दीपक जी ने भी शायरी भेज दी है, एंड इन्हां दी शायरी में ऑन एयर कर दिया। एंड जी हुंदा है ना कभी कभी कि इंसान अपने वालों बेस्ट करता है, लेकिन ये जिहड़ी चकाचौंध है ना दुनिया की, जिस विच जिहड़े रिश्ते हैगे है, ओहो दिखावटी रिश्ते, कदी कदी इंसान ना उन्हां वल ज्यादा ही झुकाव उन्हां दा हो जांदा है। एंड जिस करके लगता है कि जिहड़े सच्चे रिश्ते है ना, उन्हां नूं इन्नी वैल्यू मिल नहीं पाती है ना। सो बस इसे नूं बड़ी ही खूबसूरती दे नाल जो अज दे शायर है उन्होंने बयान किया है कि जदों ये चमक घट जानी है तो फिर इंसान ने वापिस आना है उस सच्चे रिश्ते वाल ही, जो कि पहला तो कदर नहीं पाई लेकिन हाँ रियलाइजेशन जरूर हो जाती है। सो दीपक जी की शायरी वाल चलते हैं, कहते हैं, अभी जमाने की चमक है उनकी आंखों में, अभी जमाने की चमक है उनकी आंखों में, जब ये चमक उतरेगी तो लौट आएगी मेरी आगोश में। क्या बात है जी, क्या बात है। एंड ओरिजिनल शायरी भी कुछ इधर ही है, जिस विचार कहते ने, अभी जमाने की चमक है उनकी आंखों में, अंधेरा होने दो मेरा ही पता पूछेगा। सो ये सी अज दी शायरी। थैंक यू सो मच थोड़े सारे दे टेक्स्ट मैसेजेस लई, दीपक जी, चरणजीत जी, अमरजीत जी, हिमांशु जी, हरनीत जी, मोहित जी थोड़ी शायरी वास्ते, एंड राजा जी थोड़े टेक्स्ट मैसेज वास्ते, एंड ऑफकोर्स जेडे सुन रहे सी। उम्मीद है कि थोड़ा पसंद आया होगा अज दा शो। हुण जी समा हो गया शो नूं इत्थे वाइंड अप करन दा। जांदे जांदे एक बड़ा ही खूबसूरत गाना लगा के जा रही हां, अमरिंदर गिल दी आवाज दे विच है इह गाना। एंड बिल्कुल मुलाकात मेरी होनी है थोड़े सारे नाल, कल शो होएगा प्यार ते रंग ते मंडे वाले दिन, लेकिन फुल ऑन पंजाबी दे विच मुलाकात होएगी हुण कल। सो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखो, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने का भी। हंसते रहो, वसते रहो, एंड सुंदर रहो, रेड एफएम इस दा मजा ही कुछ और है।

0: Hi guys, this is Bohemia. You guys got it locked on Red FM.
1: नॉर्थ वेस्ट कैलगरी में कुछ खास होने वाला है। वेरोना नॉर्थ टाउन होम्स ग्रैंड ओपनिंग ज्वाइन करो, जहां दो स्पेक्टेकुलर ड्रोन लाइट शोज आसमान को रोशन करेंगे। सैटरडे 12 सितंबर 6:30 से 9:30 तक रिफ्रेशमेंट्स, स्नैक्स और बहुत कुछ एंजॉय करो। साथ ही ब्यूटीफुल शो होम्स देखो और स्पेशियस मॉडर्न 3 और 4 बेडरूम टाउन होम्स का टूर लो, अटैच्ड गैराजेस और खूबसूरत इंटीरियर्स के साथ सेज हिल की अल्टीमेट नॉर्थ वेस्ट लोकेशन में। सिर्फ 40 अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। जानकारी के लिए विजिट tricohomes.com.
2: Ladies, are you ready to take the driver's seat of a new career? Here's your chance to gain valuable skills, build confidence, and get job ready. With over 18 years of experience, People Driving Academy is offering Class 3 licensed training with air brake, specially designed for women and funded by the Government of Alberta. Call 403-612-0040, 403-612-0040, or visit peopledriving.ca. People Driving Academy, your go-to destination for the great lessons.
3: Remax Crown de owners Raman Chahal te Happy Dillon to hatta kar 90 dinan vich sell karan di guarantee de sakde han te bahut hi wajib commission charge karde han. Eh marketing layi professional presentation and strong internet advertisement jehe kamyab tareeke apnaunde han jo tuhade ghar nu ghat to ghat samay vich vadh to vadh keemat vich vechan vich madadgar sabit ho sakde ne. Hor jankari layi call Remax Crown de owners and multi award winning realtors Happy Dillon 403-667-0012 aur Raman Chahal 403-922-2000.
4: अपने सोने जे घर दी क्लीनिंग करवानी होवे वधिया ते शानदार, ता हाईवे क्लीनिंग सर्विसेज दा काम है बेहतरीन ते ईमानदार।
5: ए रेजिडेंशियल ते कमर्शियल कारपेट, फर्नेस एंड डक्ट क्लीनिंग दा काम कर देने। इना कोल ने फुल हाउस क्लीनिंग दे वधिया पैकेजेस। ए नवे करन दी पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग करन दे माहर हन। वर्कर्स दी हायरिंग भी शुरू है। क्लास 5 लाइसेंस होना जरूरी है।
4: कॉल विक्की नरूला 403-973-4039, 403-973-4039। हाईवे क्लीनिंग सर्विसेज।
6: तुसी सुन रहे हो प्यार दे रंग, ओनली ऑन रेड एफएम

0: नंबर वन साउथ एशियन स्टेशन।
1: पाकिस्तान की तहजीब, पाकिस्तान का संगीत, रिवायती नए और कभी जोश से भरे गीत, हल्की फुल्की गुफ्तगू, चीदा चीदा खबरों पे तबसरा, अंदाज अनोखा तो कभी माहौल मजे से भरा। रेड एफएम पर पेश खिदमत है प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान, सज्जाद मिर्जा के साथ।
2: हमारा पाकिस्तान,
0: दिस इज रेड एफएम,
1: हमारा पाकिस्तान।
0: रेड एफएम।

जो कतरे में समंदर को देखते हैं, तुझे मंजर बामंजर देखते हैं, कब आए दर्द जब से जेबतन है, खुशी को अपने अंदर देखते हैं। चलो अमनो अमा है मैं कदे में, वहीं कुछ पल ठहर के देखते हैं, कभी तन्हाई ने तन्हा न छोड़ा तमाशा, फिर भी घुस कर देखते हैं, जो कतरे में समंदर देखते हैं, तुझे मंजर बामंजर देखते हैं।

0: नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता। कोई मुझे तुझे छोड़ने को कहे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा।
1: अरे भैया, रेड एफएम है ही ऐसा कि हर कोई दीवाना हो जाए और इसकी आदत छूट ही ना पाए, क्योंकि
2: इसका मजा कुछ और है।
3: ये है रेड एफएम।
4: खास मौके दी रौनक नु स्वाद नाल भरपूर करेंगे लवली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
5: वेज नॉन वेज डिशेस, समोसे, पकौड़े, टिक्कियां, छोले भटूरे अते हर तरह दी टेस्टी मिठाइयां। केटरिंग करवाउन लई भी इना नु कांटेक्ट करो। डाइनिंग जा टेक आउट लई लवली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
6: अपनी नेड़ली किसी भी लोकेशन ते आओ ते फैमिली एंड फ्रेंड्स नाल एंजॉय करो स्वादिष्ट खाना। फर्स्ट लोकेशन सवाना, सेकंड लोकेशन वेस्ट विंड्स ड्राइव, थर्ड लोकेशन स्काई व्यू, फोर्थ लोकेशन रेड एम्बर्स वे नॉर्थ ईस्ट। लवली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
7: सेल सेल सेल, स्टोर क्लोजिंग सेल।
8: जी हाँ, पंजाब फर्नीचर एंड डेकोर बंद होने तो पहला अपना पूरा स्टॉक क्लियर करने लिए दे रहा है अप टू 70% ऑफ एवरीथिंग मस्ट गो। इंडिया तो बने बॉक्स बेड्स ते खूबसूरत मंदिरा ते लो फ्लैट 50% ऑफ। नाल ही डेकोर अते रिलीजियस आइटम्स ते मिल रहा है फ्लैट 70% ऑफ। पर जल्दी करो, इना कोल सिर्फ लिमिटेड स्टॉक ही बाकी है। विजिट पंजाब फर्नीचर एंड डेकोर 211076 वेस्ट विंस क्रेसेंट नॉर्थ ईस्ट।
9: यार बड़ी टेंशन च लगदा, की गल सोखा?
10: मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, सट्टा करके काम भी छुट गया, उत्तो इंश्योरेंस कंपनी भी कोई राय नहीं पा रही।
9: तू वकील सतनाम औजला नु मिल, उना कोल पर्सनल इंजरी क्लेम्स हैंडल करन दा 25 साल दा तजुर्बा है।
11: मर्चेंट लॉ ग्रुप दे लॉयर सतनाम औजला पर्सनल इंजरीज दा मुआवजा तो अंश मदद कर देनी। किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट तो बाद कॉम्पनसेशन क्लेम करन लई कॉल 403-237-7777 403-237-7777। एबीसी अते अल्बर्टा विच हुए एक्सीडेंट दे क्लेम्स हैंडल करदे ने।
12: स्काईव्यू ब्लाइंड्स एंड शेड्स दे नाल अपनी स्पेस नु देओ एक प्रीमियम लुक।
13: स्काईव्यू शेड्स वालों सर्टिफाइड चाइल्ड सेफ ब्लाइंड्स लोकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अपने होम, ऑफिस, डे केयर या किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट ले लवो कॉर्डलेस, सॉफ्ट वॉल या ज़िगबी स्मार्ट शेड्स एट बेस्ट प्राइस।
12: अपने लिविंग रूम ते बेडरूम नु दो स्टाइलिश डिजाइनर लुक विद देयर ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स।
13: ते सब तो वधिया गल, डिजाइन कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है।
12: लोकल शोरूम विजिट करो या कॉल करो ते ब्लाइंड शेड्स या वॉलपेपर ते चल रही सेल्स प्रमोशन दा फायदा लो। कॉल 403-714-0416।
14: वड्डा कालियां दा मारिया, हौली गड्डी ना चलाई कदे, भजाई चल भजाई चल।
15: ओके मॉम ओके, तू चिल कर।
14: हां की कीता
15: तू? ही तो कहंदी सी जदा हौली ना चलाई टिकट दवाती।
16: अणगहली करके मुसीबत विच फस गए हो, चाहिदा है हल ता एरन ट्रैफिक टिकट नाल करो गल। ए तुहाडे पॉइंट्स भी कटवाउणगे ते पैसे भी बचाउणगे। किसी भी कारण जे मिल गई है ट्रैफिक टिकट ता संपर्क करो एरन साल जां सुखा साल। एरन ट्रैफिक टिकट 403-682-2222 403-681-2222।
17: बॉम टूल्स लेके आए हन डिवॉल्ट स्पेशल इवेंट कैलगरी विच सिर्फ एक दिन ले फ्राइडे 11 सितंबर नो। डिवॉल्ट ते कॉर्डलेस टूल्स, हैंड टूल्स ते एक्सेसरीज ते अमेजिंग डील्स अते फ्री गिफ्ट्स।
18: डिवॉल्ट 20 वोल्ट कॉर्डलेस टूल्स ते $299 जा इस तो वध स्पेंड करो अते लाओ डिवॉल्ट 20 वोल्ट मैक्स 5 एम्प्स बैटरी बिल्कुल फ्री। डिवॉल्ट 60 वोल्ट कॉर्डलेस टूल्स ते $749 जा इस तो वध स्पेंड करो अते लाओ डिवॉल्ट 9 एम्प्स फ्लेक्स वोल्ट बैटरी फ्री।
17: डिवॉल्ट स्टेनले फैट मैक्स अरविंद या लिनॉक्स हैंड टूल्स अते एक्सेसरीज से $299 या वध स्पेंड करो अते लो फ्री 100 पीस इंपैक्ट रेडी स्क्रू ड्राइविंग बिट सेट विद टफ केस जा वीआर फ्रेमिंग लेदर पाउच।
18: फ्राइडे सितंबर 11th सवेरे 7 बजे तो लेके शाम 4 बजे तक बॉम टूल्स कैलगरी स्टोर ते जरूर पहुंचो।
17: इस तो इलावा होर भी बहुत सारे टूल्स सेल ते हन, लिमिटेड क्वांटिटीज व्हाइल सप्लाईज लास्ट।
18: डीवॉल्ट स्पेशल इवेंट फ्राइडे सितंबर 11th बॉम टूल्स कैलगरी। बॉम टूल्स, बिल्ड ऑन सर्विस, ड्रिवन बाय वैल्यू।
19: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਲਿਆ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਬਾਈ ਸਕੋਸ਼ੀਆਬੈਂਕ।
20: ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਦੀਵਾਲੀ ਧਮਾਕਾ।
21: ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਸਜੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਊਟਫਿਟਸ, ਜੁਐਲਰੀ, ਗਿਫਟਸ, ਡੈਕੋਰ ਆਈਟਮਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।
19: ਫੈਸਟਿਵ ਫੂਡ ਸਟਾਲਸ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ,
21: ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਮਸਤੀ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਔਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ।
19: ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ।
21: ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਟੂ ਯੋਰ ਸਿਟੀ,
19: ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ।
22: Your destination to all things Pakistani.
23: This is Hamara Pakistan.
24: Red FM weather.

0: your gateway
1: to South Asian vibes.
2: Red FM, always on,
1: always Desi.
3: जिंदगी दी ना ता कोई मैनुअल हुंदी है ते ना ही कोई डिस्क्लेमर कदे भी कोई औखी कड़ी आ सकदी है।
4: इस समय विच ल्यूमिना लॉयर्स LLP दे वकील अमनप्रीत गरेवाल द्वारा दित्ती सही सलाह काफी कामयाब साबित हो सकदी है। इना दी टीम इमिग्रेशन मैटर्स दिया शुरुआती एप्लीकेशंस तो लेके अपील्स एंड डेपोर्टेशन तक माहिरता रखदी है। नाल ही फैमिली लॉ दे हाई कॉन्फ्लिक्ट सेपरेशन, डिवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, रियल एस्टेट दे सेल, परचेज, प्राइवेट मॉर्गेज ते फाइनेंस वर्गे गंभीर मसलियां विच भी लंबे समय तो तजुर्बेकार है।
3: कॉल लॉयर अमनप्रीत गरेवाल 0395722265।
5: यार तेरा सोफा है या दलदल, मैं तो अंदर ही दस गया।
6: यार स्टोर विच तां बड़ा सोहना लगदा सी, अजे 6 महीने होए लए नूं।
7: फेयर डील फर्नीचर तो लिया हुंदा तां एदा ना हुंदा।
8: फेयर डील फर्नीचर दी 35th एनिवर्सरी सेल चल रही है ते इस मौके 35 महीनियां लई सिर्फ 0% इंटरेस्ट ते लो सारी फर्नीचर आइटम्स ऑन अप्रूव क्रेडिट। फेयर डील फर्नीचर ते आओ और सोफा ऐसा लो जो सालों साल चले।
9: फेयर डील फर्नीचर 2023 34th Street Northeast, Calgary.
10: नवी पिक्चर देखी
11: यार, तू केड़ा फिल्टर यूज करती है? तेरे दंद इन्ने व्हाइट किदा हुंदे ऑलवेज?
10: ओ ए फिल्टर नहीं, द पोर्ट डेंटल है।
11: द पोर्ट डेंटल?
10: हाँ, द पोर्ट डेंटल तो टीथ क्लीनिंग करवाउंदी हां मैं।
12: द पोर्ट डेंटल तो टीथ क्लीनिंग एंड डेंटल हाइजीन अपॉइंटमेंट बुक करवाओ ते ऑलवेज मुस्कुराओ। डेंटल हाइजीन एंड क्लीनिंग अपॉइंटमेंट्स हफ्ते दे किसी भी दिन करवा सकते हो। विजिट यूनिट 3145-4250, 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट। कॉल डॉक्टर बलबीर संधु एंड एसोसिएट्स 403-345-1110। द पोर्ट डेंटल।
2: Red FM.

रहीम शाह साहब और साहिबा नूर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं। पश्तो सॉन्ग है और वैसे पश्तो बड़ी खूबसूरत जबान है, बट माला पख्तून रज़ी थोड़ी बहुत जो मुझे समझ आई है इस गाने का जो थीम वो यही है कि ये गाना बुनियादी तौर पर जो है ना वो पश्तून होने पर फख्र और अपनी जो शनाख्त है, सकाफत है, रिवायात हैं, बहादुरी है और अपनी सरजमीन से जो मोहब्बत के बारे में है। और ये जो गाना है इसमें गुलकार अपनी पश्तून शनाख्त जो है उसको फख्र के साथ बयान करता है और पश्तूनों की रवायती जो है गैरत, मेहमान नवाजी, बहादुरी और अपने लोगों से वापसदगी को उजागर करती है। तो मेरे ख्याल में इसकी जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है वो यही है, लेकिन अगर आप पश्तो पूरी जानते हैं तो ज़रा मुझे ज़रूर बताएं कि जो मैंने आपको ट्रांसलेशन तो खैर ये नहीं थी, लेकिन जो मुझे आइडिया हुआ इस सॉन्ग में क्या है ये वही है। तो अगेन मतलब पश्तो बड़ी बड़ी बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है, बट माला पख्तून राजी है। आज के प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ ही देर के बाद मुलाकात होगी। प्रोग्राम का नाम है सुनहरे गीत, हमारे साथ रहिएगा।

0: You are listening to
1: CKYR 106.7 FM.
2: This is Red FM Calgary.
3: जेकर तुहानू किसी कार एक्सीडेंट विच डिगन करके एयरप्लेन विच जहाँ कोई होर सट लगी है ता येंको पोपोविक सिद्धू दी लॉयर्स दी टीम तुहानू तुहाडे हक दी सेटलमेंट दवाउण च मदद कर सकदे हन। येंको पोपोविक सिद्धू दे लॉयर्स इंश्योरेंस क्लेम्स तुहाडे लई आसान बना दिंदे ने। ए फीस केस सेटलमेंट दे विचों ही चार्ज करदे हन। अपने क्लाइंट्स नू मुकम्मल ते तसल्ली बख्श सर्विस देण लई येंको पोपोविक सिद्धू नू 2014 तो हुण तक लगातार कंज्यूमर चॉइस अवार्ड नाल नवाजा गया है। अज ही हरमन सिद्धू, डेविड येंको, जदीपक संधू नू कॉल करो 4032620262।
4: अच्छा मेनू एक गल दसो, जेकर क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच होवे ते मेरा मूवी देखन दा मूड होवे ता तुसी की करोगे?
5: एदे च की है, तेरे नाल मूवी देखन जावांगे।
4: अच्छा जेकर तुहाडे दंद विच दर्द करके डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट होवे ते मेनू बोटॉक्स ले जाना होवे फिर तुसी की करोगे?
5: असी फिर ओएसएस स्माइल मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक जावांगे।
6: ओएसएस स्माइल मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक ते हन डेंटिस्ट्स ते स्पेशलिस्ट फिजिशियंस। आज ही विजिट करो एट सनरिज नियर सुपर स्टोर और कॉल 587-617-4696।
7: ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ?
8: ਹਾਂ, ਪਰ ਕੈਲਗਰੀ ਕਾਰਪੇਟ ਐਂਪਾਇਰ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ।
7: ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਰਦਨ ਲਾਈਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ।
8: ਹਾਂ, ਪਰ ਕੈਲਗਰੀ ਕਾਰਪੇਟ ਐਂਪਾਇਰ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ।
9: ਕੈਲਗਰੀ ਕਾਰਪੇਟ ਐਂਪਾਇਰ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ, ਹਾਰਡਵੁੱਡ, ਲੈਮੀਨੇਟ, ਵਾਈਨਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਪੇਟ ਤੇ ਲਵੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੈਲਗਰੀ ਕਾਰਪੇਟ ਐਂਪਾਇਰ 2935 19th Street North East ਜਾਂ ਕਾਲ 4035101515।

0: वाह सुन साहिबा सुन प्यार की धुन मैंने तुझे
1: अरे बंद करो यार ये सुनो असली वाला
2: रियल सॉन्ग रियल मेलेडी ये है रेड एफएम सुनने का असली मजा क्योंकि इसका मजा कुछ और
3: है रेड एफएम। हां जी किदा लगया फिर तनु एल्बर्टा।
4: हां जी जगह तो सोनी है पर जदों दे शिफ्ट होए है ना फ्रेश वेज नॉन वेज मैरिनेटेड चिकन मीट बहुत मिस करते हैं।
3: लगता है तुसी गर्चा ब्रोस दे फ्लेवर टेस्ट नहीं किते।
4: गर्चा ब्रो इत्थे हैगा?
3: हैगा नहीं जी हैगे पूरे कनाडा दा परोसेमंद नाम गर्चा ब्रोस वेस्ट विंड साइमन वैली जैक्सन पोर्ट एंड एडली विच है। तुसी गर्चा ब्रोस दी सारीयां लोकेशन ते बहुत वधिया कीमतां ते वेज नॉन वेज आइटम्स ले सकदे हो।
5: गर्चा ब्रोस विजिट अ स्टोर नियर यू।
6: जाते इना दे पेरेंट्स आया सिमरन तो दादू दादी बगैर नहीं रहंदी। कदे पार्क चलिए कदे मैं दादू दादी नाल सोना कदे मैं वड्डे पापा कोलो रीडिंग करनी है।
7: बच्चियां दा मोह हुंदा बहन जी मैं ता आप अपने पेरेंट्स नु सुपर विजे ते मंगाउणा है। इंश्योरेंस सोचदी आ किथों करावां।
6: हरपिंदर सिद्धू होरा कोलो इंश्योरेंस बारे सारीयां गल्लां चंगी तरह समझांदे आ।
8: वधिया रेट अते सुपर विजे इंश्योरेंस संबंधी हर सहायता लई अज ही पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नु कॉल करो 403-404-3500 दैट्स 404-3500 403-404-3500।
9: हेलो वीरे असी तो तेरे ब्याह ते इंडिया जरूर आवांगे। मेरे वीर दा ब्याह मेनू गोंडे गोंडे चा
10: पर टिकटां दे रेट सुन के तेरा चढ़ जाना सा।
9: ओ नहीं जी जदों मान इंटरनेशनल ट्रैवल होवे तां कादी परवाह। तुसी इंडिया पाकिस्तान यूरोप या दुनिया दे किसी भी देश जाना होवे या वधिया टूर पैकेज लेना होवे तां मान इंटरनेशनल ट्रैवल बेस्ट प्राइस ते टिकटां देंदे हन 24/7 सर्विस। नाले हुण इंडिया विच भी खुल गए हन मान इंटरनेशनल ट्रैवल 3730108 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट यूनिट 1125 कैलगरी कॉल 5876-06-0104।
11: ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਲਿਆ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਧਮਾਕਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਬਾਈ ਸਕੋਸ਼ੀਆਬੈਂਕ।
12: ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਦੀਵਾਲੀ ਧਮਾਕਾ
13: ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਸਜੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਊਟਫਿਟਸ ਜੁਐਲਰੀ ਗਿਫਟ ਡੈਕੋਰ ਆਈਟਮਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
11: ਫੈਸਟਿਵ ਫੂਡ ਸਟਾਲਸ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ
13: ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਸਤੀ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਔਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ
11: ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ
13: ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਟੂ ਯੋਰ ਸਿਟੀ
11: ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ।

एक आजाद नज्म है जिसका मौजू है कांच की चूड़ी। ज़ैगम कुरैशी साहब ने इसकी फरमाइश की है। ये जो आजाद नज्म है जिसका मौजू मैंने बताया कि आज कांच की चूड़ी है, ये इसकी शायरा फाखरा बतूल हैं और उनकी किताब पलकें भीगी भीगी सी

फाखरा कहती हैं कि जब उसको देखा तो मैंने जाना वजूद शीशे का लेके आया है वो जमीन पर, न जाने कैसे न जाने क्यों कर गिरा तो लाखों ही किर्चियों में वो आज तकसीम हो गया था। मुझे लगा यूं कि रूह में वो उतर गया है, वो घर मेरे दिल में कर गया है। मैं उसकी जानिब बढ़ी और उसकी वजूद की एक एक किर्ची को चुनने बैठी। जब अपने होंठों से अपनी पलकों से अपनी पूरों से चुन लिया तो वो गिर पड़ा, फिर बिखर गया, फिर यहां से लेकर वहां तलक हर तरफ जमीन पर था किर्चियों में बटा हुआ वो। तो मैंने बढ़कर खुलूस से दिल से चुना फिर उसको, फिर उसको जोड़ा। लहू थी पूरे, धुआं थी आंखें, ते होंठ जख्मी, मगर यकीन था कभी तो आएगा वो लम्हा, रियासतों का मोहब्बतों का सिला मिलेगा, वो मेरे जख्मों को चूम लेगा। मैं उसको चुन चुन के थक गई थी बेकली सी, थी तशनगी सी, ये वसवसा भी डरा रहा था कहीं वो फिर से न टूट जाए। कहा ये दिल ने कि कुछ ऐसा कर दो वो दूर एक पल ना रहे तुझसे। तो मैंने उसको एक ऐसी चूड़ी की शक्ल बख्शी जो मेरी अपनी कलाई में सजी रहेगी। तो फिर हुआ यूं, वो बन के चूड़ी मेरी कलाई को चूमता है, मगर ये धड़का लगा हुआ है कहीं ये चूड़ी न टूट जाए, ये इसकी छन छन न रूठ जाए।

0: जी सर, प्रोग्राम का नाम है सुनहरे गीत और ये प्रोग्राम आपके लिए मंडे टू थर्सडे रात 10 बजे से 11 बजे तक आपके अपने चैनल रेड एफएम कैलगरी से पेश किया जाता है। 4032861067 हमारे स्टूडियो का नंबर, ठीक है, ये हमारे स्टूडियो का नंबर हुआ करता है। और इसी नंबर पे आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ड्राइव करते प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप प्लीज अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन अपनी ड्राइविंग की तरफ रखिए और अपनी हैंड फ्री डिवाइस का इस्तेमाल कीजिए। बात यह है, कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं कि जो आपको परेशान कर देते हैं। ऐसे ही है ना, बचपन से लेके फिर उसके बाद टीनेज में, टीनेज के बाद फिर हम जब बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाने के बाद मिडल एज, मिडल एज के बाद इवन जब मतलब 50 प्लस में भी चले जाते हैं, तो ऐसे जिंदगी में ना कभी कभी कुछ लोग हमें जिंदगी में मिलते हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, उनको एक मसे की बात यह है कि जब हम ऐसे लोगों को परेशानी की शक्ल में देखते हैं ना, तो फिर हम उनका जो मकसद है वो पूरा कर देते हैं। ऐसे है ना कि अगर कोई बंदा आपको परेशान करना चाह रहा है, कोई आपको कोई टीज कर रहा है, तो जब उसको उसका जो टीज करना है उसको आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं, चेहरा परेशान हो गया है, तो इसका मतलब है कि आप जो दूसरा बंदा जो चाह रहा है वो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, अपनी हेल्प नहीं कर रहे, यू आर नॉट सपोर्टिंग योर सेल्फ। ऐसा जब होता है ना तो फिर इंसान परेशान हो जाता है। और ऐसे लोग अक्सर होता क्या है कि अगर हम तस्वीर का थोड़ा सा रुख चेंज करें ना, तो तस्वीर का रुख हम ऐसे चेंज करें कि ऐसे लोग जो हैं उनको आपने अपने ऊपर तारी नहीं करना, बल्कि उनको इस अंदाज में लेना है कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, आपको ब्रेव बनाने के लिए आते हैं, आपको हौसला देने के लिए आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जिंदगी में कभी नाकामी हो जाए, किसी इम्तहान में अगर आप फेल हो जाए, ठीक है, तो उसका ये मकसद नहीं होता कि हम जो है वो इस काबिल नहीं। जब आप ये सोचने बैठ जाएंगे कि नहीं भाई मैं तो फेल हो गया, अब मेरा क्या बनेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिंदगी की जो नाकामी है ना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की कुंजी लेके लाती है आपके पास, आपको सिखाने के लिए आती है। ऐसे कभी कभी जाहिर है क्लास में भी कभी हो जाते हैं, छोटी क्लासेज में भी, बड़ी क्लासेज में भी, जिनके साथ उठना बैठना हो उनके साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप उनके रवैये हमें बॉदर करते हैं। तो जब उनके रवैये आप बहुत सीरियसली ले लेंगे, आंखों में आंसू आएंगे, नींद नहीं आएगी, हर वक्त उनके बारे में सोचते रहेंगे, वो बेशक आराम से घर में सो रहे हो लेकिन आप परेशान अपने आप को खुद कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, आप खुद अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो लिहाजा कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसे लोग आ जाएं तो उनको पॉजिटिव लेना है कि ये आपको सिखाने के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो सिखाने के लिए ये कि आपको बात करने का पता चलता है, दूसरा बंदा जब आपकी बाउंड्री में आता है तो आपको पता है कि उसको कैसे रोकना है, ये सारी चीजें, इन चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। तो चलिए आप सब अपने चेहरे पर जरा खूबसूरत प्यारी सी स्माइल लेके आइए और आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत प्रोग्राम सुनहरे गीत।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है,
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
1: ये कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है,
2: तो भुगतो।

0: ਤੁਸੀਂ ਰੈਡ ਐਫ ਐਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿੱਲ C18। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੈਡ ਐਫ ਐਮ ਐਪ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰੈਡ ਐਫ ਐਮ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਐਪਲ ਐਂਡ ਐਂਡਰੋਇਡ।
1: फ्रेश ग्रोसरी वधिया समान जिथो मिले है इको ही नाम सांझा पंजा।
2: ए कीमता 10 सितंबर तक मिलनगियां। वेजी मैरो 99 सेंट्स नु पाउंड, हरी शिमला मिर्च 99 सेंट्स नु पाउंड, बीसी वाले टिंडे 199 नु पाउंड, बीसी वाली कौड़ी हरी मिर्च 199 नु पाउंड, 1 केजी नेशनल ब्रांड पिकल्स 399 ईच, 4 पाउंड मूंग दाल 499, 25 पाउंड रेड अनियंस 1899, 50 पाउंड येलो अनियंस 1899।
1: सांझा पंजा ग्रोसरी स्टोर।
3: फ्राइडे नाइट थी, मेरे दोस्त ने कहा कि वो मुझे लेने आएगा और हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे। मैं इंतजार करता रहा और फिर एक फोन आया, मेरे दोस्त की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिस गाड़ी ने मेरे दोस्त को टक्कर मारी उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। आखिर लोग शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाते हैं?
4: शराब पीकर गाड़ी चलाने से आप अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। A message from Red FM.
5: सुनो सुनो सुनो, सारे इलेक्ट्रीशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर अते रेनोवेटर वीरां लई खास सूचना।
6: फर्स्ट चॉइस प्लंबिंग एंड लाइटिंग दे शोरूम ते आओ। बे नंबर 2120396152 सेकंड एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट नियर राजवीर बैंक्वेट हॉल।
5: शैंडलियर्स दी बेशुमार वैरायटी ते लो वड्डे डिस्काउंट्स। इस तो अलावा बाथ एक्सेसरीज, फॉसेट्स, सिंक्स, टॉयलेट सेट्स, बाथटब्स अते एलईडी बल्ब्स लो वाजब कीमतां ते। कॉल 403-457-1457। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग।
7: जे रेड एफ एम है तुहाडी पसंद ते वसदा है तुहाडे दिल विच, तां हुण ए गल दसो अपने अंदाज विच। 20 सेकंड दा म्यूजिक वाला जिंगल बनाओ या जिंगल दे कैची लिरिक्स भेजो। सेलेक्ट कीते जिंगल रेड एफ एम ते प्ले हुंदे रहणगे तुहाडे ना दे ना। सो माइक चको, जिंगल बनाओ ते दसो दुनिया नू रेड एफ एम तुहाडे लई की है। 15 सितंबर तो पहला अपना जिंगल सबमिट करो contests@redfm.ca पे। रेड एफ एम, तुहाडी आवाज, तुहाडी वाइब, तुहाडा जिंगल।
8: रेड एफ एम कैलगरी, कैलगरी इस दा मजा कुछ होर है।
9: दिस इज सुनहरे गीत विद योर होस्ट सज्जाद।
10: जी कुछ टेलीफोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम सुनने वालों का जो गीत संगीत के सफर में हमारे हम सफर बनते हैं। आरडी बहुत शुक्रिया आपका, आपकी हाजिरी लग गई, आपने हमेशा की तरह आप प्रोग्राम में एक खूबसूरत अंदाज में शामिल होती हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और बॉबी साहब उम्मीद है आपने भी अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा। जसवीर जी आपकी पसंद भी ऑन एयर हो चुकी। सनी आपकी पसंद का गीत प्रोग्राम के आगाज में हमने प्ले किया। नौशाद साहब है, नौशाद साहब कहते हैं आज कोई फरमाइश नहीं है, सिर्फ आपकी पसंद। जी मेरी पसंद नहीं, आप जैसे और हमारे बहुत प्यारे लिस्टनर्स हैं जो इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उन सबकी फरमाइश जाहिर है कि हमारी मिली जुली फरमाइश होती है, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद वसीम जफर साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं, वसीम साहब कहते हैं प्रोग्राम अच्छा है, अगर हो सके आज के प्रोग्राम में कहते हैं जी के जगजीत साहब की आवाज में हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। जी मैं कोशिश करता हूं। और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज जो है मेरे सामने वो है जी शाइस्ता का। जी और शाइस्ता प्रोग्राम सुन रही हैं। अच्छा आपने जिस गीत की फरमाइश की है कि हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, जी हाँ क्या लिखा ये हम गाने में सुनेंगे। बहुत शुक्रिया शाइस्ता आपने जो है वो प्रोग्राम में शामिल हुई। उसके बाद फरीद साहब अभी टेक्स्ट मैसेज मेरे सामने मौजूद है, फरीद साहब ने भी प्रोग्राम को पसंद किया। आपने जिस गाने की फरीद साहब फरमाइश की है बड़ी माजरत, मेरा नहीं ख्याल के आज के प्रोग्राम में, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को कंडेंस कर लूं, थोड़ा सा टाइट टाइट चले, तो हो सकता है कि आपकी पसंद जब वो शामिल हो जाए। अरे क्या बात है जी, अनीता भी आज बड़े दिनों के बाद प्रोग्राम में शामिल हुई, अनीता अलमास बहुत शुक्रिया अनीता जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और तो चलिए जनाब प्रोग्राम कि अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। आवाज आपकी जानी पहचानी है, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की, थोड़ा सा एक अपबीट सॉन्ग है। तो आज एक ऐसी खूबसूरत बात है कि आज सारे ही गाने कुछ अपबीट के फरमाइश पे आ रहे हैं। 4328610067 हमारे स्टूडियो का नंबर हुआ करता है। प्रोग्राम सुनहरे गीत मंडे टू थर्सडे रात 10 बजे से 11 बजे तक, जी हाँ रात 10 बजे से 11 बजे तक आपके अपनी चैनल 1067 रेड एफएम से पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद मिर्जा और प्रोग्राम का नाम है सुनहरे गीत।

तुझसे अब वो मोहब्बत नहीं की जा सकती, तुझसे अब और मोहब्बत नहीं की जा सकती, खुद को इतनी भी अजियत नहीं दी जा सकती। जानते हैं कि यकीन टूट रहा है दिल पर, फिर भी अब तर्क या वहशत नहीं की जा सकती। शहर का शहर है और इसमें किसी भी सूरत सांस लेने की सहूलत नहीं दी जा सकती। कि रोशनी के लिए दरवाजा खुला रखना है, शब से अब कोई इजाजत नहीं ली जा सकती। नौशी गिलानी का ये कलाम था कि तुझसे अब और मोहब्बत नहीं की जा सकती, खुद को इतनी भी अजियत नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों का। अनीता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। आरडी आपका शुक्रिया। और मैं माजर चाहता हूं कि शाइस्ता आपने जिस गीत की फरमाइश की थी, चलिए मैं कोशिश करता हूं कि चलते चलते कुछ आपकी पसंद का जो गीत है वो भी शामिल हो जाए, लेकिन इस गीत के बाद आपसे लेंगे इजाजत और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल नहीं जी, माजर चाहता हूँ, कल तो फ्राइडे है, 3 दिन की छुट्टी के बाद मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुर इकबाल जी बहुत शुक्रिया, आपका भी चलते चलते आपका भी मैसेज आया।

0: playing what you want to hear.
1: पैसे तो अपने पहुंचने तो भी पहला पहुंच जाने हैं।
2: 24 घंटे दे अंदर इंडिया नु पैसे भेजने या मंगवाने लई ए क्लास फॉरेन एक्सचेंज डॉलर दे वधिया रेट ते भरोसे योग सेवा लई कॉल करो नमजीत सिंह रंधावा नु 4037143326 4037143326 ए क्लास फॉरेन एक्सचेंज।
3: की तुहानू पता है कि कैनेडा सरकार वालों 90,000 डॉलर तक की ग्रांट दी जा रही है जे किसी की उम्र 49 साल तो घट है वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल हन जा किसी एक्सीडेंट करके परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है ता वो इस ग्रांट लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इस विच कई कॉमन मेडिकल कंडीशंस भी क्वालिफाई कर सकती है जिवें टाइप 1 डायबिटीज ADHD सीवियर डिप्रेशन एंजाइटी आदि कंडीशंस अप्लाई। जानकारी लिए कॉल पंजाब इंश्योरेंस के रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिंह सिद्धू और लवप्रीत कौर सिद्धू 4034043500 4034350।
4: टैक्स संबंधी बढ़िया सर्विसेज चाहिए तो प्रो टैक्स ब्लॉक पर आइए। ये पेरोल, बुककीपिंग, कॉर्पोरेट टैक्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कंपनी और GST जैसी सर्विसेज देते हैं बहुत ही वाजिब कीमतों पर। पर्सनल टैक्स फाइल फॉर इंडिविजुअल्स $25, फॉर कपल्स $40। फर्स्ट लोकेशन इन क्रोफुट प्रोफेशनल बिल्डिंग, कॉल 4034667788। सेकेंड लोकेशन इन एयरड्री, कॉल 4039033400। थर्ड लोकेशन इन वेस्ट विंड ड्राइव, फॉर अपॉइंटमेंट कॉल मनदीप दुग्गल 4036 07 6005।
5: This is the Late Night Show on Red FM.

0: Hawaii's number one South Asian station. Red FM.
1: Remax Crown de owners Raman Chahal te Happy Dilo to hata kar 90 dinan vich sell karan di guarantee de sakde han te bahut hi wajib commission charge karde han. Eh marketing layi professional presentation and strong internet advertisement jehe kamyab tareeke apnaunde han jo tuhade ghar nu ghat to ghat samay vich vadh to vadh keemat vich vechan vich madadgar sabit ho sakde ne. Hor jankari layi call Remax Crown de owners and multi award winning realtors Happy Dilo 4036670012 aur Raman Chahal 4039222000.
2: मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट्स लगियां गंभीर सट्टा पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजुर्बा है। कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रिहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करते हैं जिसते हो सचमुची हकदार हैं। थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन कॉन्टेक्ट अस एट bridgemohan.com।
3: सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ी अपनी डॉक्टर बलविंदर कौर बराड़ अपनी कम्युनिटी दी कुड़ी वीरपाल टट जेड़ी खुद कैलगरी EMS विच पैरामेडिक है ओदे वल्लों एक कंपनी चलाई जा रही है YYC होम केयर सर्विसेज ते मैं थानू सारयां नू बेनती करदी आं कि इन्हां दीआं कुड़ियां घरां विच आ के बुजुर्गां दी देखभाल करदीआं ने बिना किसे खर्चे तो सरकारी फंडिंग दे नाल ए कंपनी चलदी है, तुसीं इन्हां दा जरूर लाहा लो।
4: जानकारी लई कॉल 8257600983 जां विजिट yychomecareservices.com।
5: This is the Late Night Show on Red FM.

0: हुण हर जगह हर पल जुड़े रहो रेड एफएम नाल।
1: रेड एफएम दी ऐप रेड एफएम कनाडा डाउनलोड करो अते सुनो लाइव स्ट्रीमिंग
2: पॉपुलर मस्ट हियर शो सुनन दी डाउनलोड रेड एफएम कनाडा ऐप।
3: तुसी सुन सकते हो आवरली न्यूज़ ते मॉर्निंग प्रोग्राम विच इंडिया दी खबर।
4: ऐप ते तुसी अपनी चॉइस दा सॉन्ग भी रिक्वेस्ट कर सकते हो।
0: रेड एफएम सुनन लई अपने फोन अते होरना डिवाइसेस ते डाउनलोड करो रेड एफएम कनाडा ऐप। सुनते रहो रेड एफएम हर पल तुहाडे लई तुहाडे नाल।
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਸ਼ੋ।
6: Red FM hovega live on location, Unit 161 in the Pyle Business Center. Jaldi karo, sale khatam to offers bhi khatam.
7: Canada da sab to vadda beauty, glamour ate business event IWC Beauty Pageant, jithe glamour milega fashion naal, entertainment milega excellence naal, ate business opportunities milengiyan powerful networking de naal. Enjoy karo stunning fashion show, live entertainment, excellence awards ceremony ate lajawab dinner. Friday 18 September nu Royal King Palace Surrey vikhe beauty pageant which apply currently your sponsorship opportunities like contact Ajit or TJ at 236-886-3521.
8: हाँ जी मुबारक होन वीजा लग गया मुंडा कनेडा आ रहा।
9: थैंक्स यार।
8: हो की हो गया असी तेरा स्वैग नाल स्वागत करने दी तैयारी चा ते तू खुशी है नी
9: भरावा वीजा दी खुशी महंगिया फ्लाइटा ने स्वा करती।
8: हो बस इनी जी गल स्प्रिंग ट्रेवल्स नू फोन लगा सस्ती टिकट ले ते पहुंच जाए थे।
10: इंडिया आन जा जान ले सस्तियां टिकटां दवांगे स्प्रिंग ट्रेवल्स। संडे नू भी खुलते हन 604-501-4040 604-501-4040 स्प्रिंग ट्रेवल्स इन द पायल बिजनेस सेंटर।
11: Red FM
12: Diwali Dhamaka di dhamakedar stage te dikhao apna talent. Je tusi ek singer, dancer ya koi bhi amazing talent rakhde ho ta email karo apna portfolio at events@redfm.ca. Diwali Dhamaka.

0: पहली रिक्वेस्ट यो थैंक यू कैरन, थैंक यू फॉर प्लेइंग माय सॉन्ग जी, शुक्रिया शुक्रिया। पवन जी कहते ने मां पुछदी रोटी खादी है कि नहीं। सिमरन जी सॉरी आप जी नू, जय गुरु जी। पवन अंकल फ्रॉम सरी
1: जी, जय गुरु जी, बहुत बहुत तानु जय गुरु जी
0: जी बहुत बहुत जय गुरु जी की मैं तो हासा नहीं रोक रहा। ओके अमरजीत जी कहंदे ने इहनां मेरी मम्मी वाली गल करती, मेरी मम्मी नूं कहो ना हैप्पी बर्थडे, कहोगे बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। ओके कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जांदा ना,
1: कोई बंदा कह दिंदा ना सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल, है ना, फिर बंदा हुण की जो जय गुरु जी नूं आपां दिलों इही कह रहे बहुत बहुत जय गुरु
0: जी,
1: एदां ही कहीदा हुंदा।
0: अच्छा मैनूं नहीं पता। ओके ठीक है। अमरजीत जी कहते थैंक यू गाइस, दैट वाज क्विक जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमरिंदर गिल दी आवाज विच की समझाई उन्होंने, गाने दी फरमाइश की थी, जो ही लब के पताल चो लब के लै गए। कमल जी कहते थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, उन्होंने गाना मिर्जे दी फरमाइश की थी जो प्ले हुए, हाकम भी पहुंचे हुए ने। हेलो जी कैन यू प्लीज प्ले कमाल हो गया भाई सरताज, थैंक यू, यू गाइज डूइंग अ ग्रेट शो, कीप इट अप, थैंक यू हाकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। बिल्कुल सतिंदर सरताज की गल छेड़ी आ, दस दने के उन्हों का इंडिया टूर शुरू होने वाला जी, सो उन्होंने कल ही पोस्टर अपडेट किया है, उस तो बाद उन्होंने यूके टूर है, इंडिया टूर अक्तूबर तो लैके उन्होंने अप्रैल तक इंडिया टूर चलना जी।
0: वाह जी वाह।
1: तो सारे हरेक शहर दे विच जो सी तोड़ा इंडिया दे विच कोई रहिंदा हैगा या तुसी उन्हां नूं कहना चाहुंदे कि सरताज भाई नूं सुनो जाके, सो तुसी ओ शोज़ दी टिकटां बुक कर सकदे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपां बड़े घर दे नूं कह देणा क्योंकि ओ सरताज दे फैन ने, ते मतलब मैनूं लगदा सतिंदर सरताज दा कौन फैन नहीं हैगा।
1: बिल्कुल जी, ए कोई मतलब की कोई प्रमोशन रिगार्डिंग नहीं है, बस ये ट्रेंडिंग चीजां साडे शो दे विच।
0: सिमर एवी कह रहा कि इहने जदों पोस्टर दी गल कीती है ना, इहदे कोल चैक आया होया, उन्होंने कहा सीगा वी तुसी अपने शो दे विच इक वारी जरूर कह दियो, क्योंकि सिमर दे कहे ते कोई ना जावे हो नहीं सकदा, ये सारी प्रमोशनल एक्टिविटी कीती गई है।
1: इस प्लानिंग फोन आ रहा सरताज साहब दा, रुकता जो। हेलो सत श्री अकाल जी, अच्छा सिद्धा गिल बोल दे। हां जी तुहाडी भी प्रमोशन करन लगा, रुको लाइन ते रहो, वो कह रहे मेरी बोल भावे ना बोलदी तां कीती नहीं हैगी।
0: ओके यस, फिल्म आ चुकी है जी।
1: बिल्कुल बोल भावे ना बोल सिद्धा गिल दी, ए ओही गल है कि असी जेड़ा एक सेगमेंट रखिया होया उहदे विच एक अद्धी ट्रेंडिंग शो दी किसी दे इवेंट शुरू होण लगे उहदी गल्लां करदे आ, ते नाल दी नाल गल्लां करदे आ जी मूवीज दीआं गाणिआं दीआं। सो फिल्मां दे विचों आपां लईए बोल भावे ना बोल, सिद्धा गिल ते जानिआ जोशी दी जोड़ी कमाल कर रही है जी, पहली बार वधिया रिहा रिस्पोंस है ना,
0: नाले पहली बार कोई नवी जोड़ी जिहड़ी अपनी पंजाबी फिल्मां चाहिए, बिल्कुल नवी,
1: मतलब वड्डा जिगरा चाहिदा यार, कि अजकल एडे वड्डे वड्डे मगरमच्छ बैठे आ उन्हां दे सामने, है ना। तुसी
0: मगरमच्छ किहनूं कहा तुसी,
1: मगरमच्छ दे रिगार्डिंग की बहुत वड्डी वड्डियां पर्सनैलिटीज जिहड़ी कि इन्ना इन्ना पैसा इन्ने इन्ने वड्डे प्रोड्यूसर्स बैठे आ, है ना, ते एक नवी जोड़ी दा मुंडा तुसी कह लो सिद्धा गिल ते जाने जोशी, बिल्कुल फ्रेश जोड़ी है, ते उन्होंने आके
0: ओ गल वखरी है, उन्होंने पिछे जिहड़ा नाम भी बड़े तकड़ी पर्सनैलिटी दा आ, अमरिंदर गिल दे ओ हैगे ने भतीजे आई थिंक।
1: हां जी भतीजे दस्या जा रहे, ते नाल दी नाल जिहड़ी रिदम बॉयज वल्लों रिलीज कीती गई फिल्म आवाज तां हूबहू कह लो कि मैच करदी है अमरिंदर गिल नाल, सो डायलॉग्स दे विच इदां लगदा कि कार्बन कॉपी है अमरिंदर गिल
0: दी। रिव्यूज वी मैं ही सुन रही सी कि आई लगदा कि यंग अमरिंदर गिल आ चुका है, ते जिहड़ी तक पा चुका है, सो सारे नूं उहनां दी एक्टिंग भी अच्छी लग रही है। सो तुहाडे जो फिल्म की ने देख ली या प्लानिंग कर रहे हो जरूर दस्यो, ते रिव्यूज जिहड़े देने नहीं भुलने, ठीक है जी। सो हरपल जी अटवाल जी कहंदे ने, हरपल जी अटवाल जी आ चुके ने
1: जी, सत श्री अकाल अटवाल साहब।
0: अमन जी ते सिमर जी सत श्री अकाल, ठीक हो तुसी, सत श्री अकाल अटवाल जी, सी बिल्कुल ठीक ठाक आ। वे रोड रोड पुड जानी दिया, वे रोड पुड जानी दिया, सुरिंदर कौर हरचरण गरेवाल दी आवाज दे विच उन्होंने गाना सुनना। वे शरबत प्या दे मित्रा मोहम्मद सदीक एंड रंजीत को, इह तां ऐ नहीं लगदा, पर वे रोड पुड जानी दिया शरबत प्या दे मित्रा एक गाना लगता पे। ओके ठीक है जी, ठीक है, कितों लभ के लैने रोज नवे गाने, सीरियसली किड्डी की लाइब्रेरी है इना दी,
1: खोज जेड़ी हैगी इना दी जारी रहिंदी है, जिवें शो खत्म हुंदा खोज शुरू हुंदी अगले शो दे रिगार्डिंग, कि हां अज ए गाने भेजणे आ, सो ए बहुत वड्डी गल आ। सो बहुत बहुत सत्कार प्यार ते हमेशा तुहाडे लई रिस्पेक्ट बहुत वड्डी है जी तुहाडे
0: दा। सो हमारे प्रिय दोस्त भी पहुंच चुके हैं, गेस हू,
1: जसजीत चौहान जी,
0: नहीं मैं तुहानू ओ दिंदी आ पहला क्लू, गेस हू, आई विल गिव यू क्लू, ए प्लैनेट दे विच टिम टिम करदे ने,
1: टिम टिम कर तारे बाय हरप्रीत सिंह जी
0: यस हरप्रीत सिंह सत श्री अकाल अमरन सिमर बाई जी प्लीज प्ले इश्कां दे लेके
1: वैसे औखा सीगा मैं गेस कर लिया
0: नहीं सौखा सीगा प्लैनेट च टिम टिम कर तारे ही
1: ओ तो ठीक है पर हरप्रीत सिंह जी
0: हरप्रीत सिंह औखे ने ओके ठीक है सो मैं इत्थे तारीफ मैं ही लेनी चाहूंगी कि भी मैं वधिया क्लू दिनी आ ओके सिद्धू साहब कहंदे ने थैंक यू क्योंकि उन्होंने गाना गुलाब सिद्धू वाला प्ले हो चुका है जट्टा लव यू ए गाना ना वैन टोरंटो दे विच ऑलमोस्ट रोज प्ले हुंदा एक उथे लिसनर याद बेनीपाल जी ओ हमेशा गाना लवांदे ने सो उन्हां दा फेवरेट सॉन्ग है इंदर पूर्वा जी कहंदे सत श्री अकाल अमन एंड सिमर जी
1: सत श्री अकाल जी की हाल चाल
0: कितने हैंग हो गए
1: हैंग नहीं हो गया मैं मैसेज पढ़ रहे
0: ओके सत श्री अकाल इंदर पूर्वा जी उन्होंने हाल चाल तो पूछा नहीं मैं कह लगी सी बिल्कुल ठीक ठाक ओके परम कक्कड़ जी ने दो अंगूठे दिखाते ने
1: दो साढ़े एक तो डले एक मेरे लिए
0: आजकल परम कक्कड़ जी सिर्फ अंगूठे दिखाते ने यहाँ तो जोड़ते ने बस
1: की मसला हो गया परम
0: कक्कड़
1: जी चक्कर हो गया सो दसना चाहते हैं बिग बॉस की भी गल कर लेने क्योंकि इस सैगमेंट बिग बॉस भी एड किया क्योंकि पंजाब के तीन नाम ऐसे जेडे बिग बॉस च जा रहे है ते उस तो बाद सब तो ट्रेंडिंग जेडा नाम है वह हैगा दी लव लव गिल बारे तुसी पिछे कुछ समय दे विच गुरप्रीत घूगी दे नाल उन्हां नूं जोड़िया गया कॉन्ट्रोवर्सियां बहुत होईयां तुसी उन्हां बारे काफी कुछ सुनिया होगा
0: कॉन्ट्रोवर्सी हुई उस तो बाद हो, नाम चाहे सर्च चाहे ओ फिर सोशल मीडिया दे बहुत वायरल रहे हर चैनल ते उना दे यू नो या तो इंटरव्यूज आ रहे उन्होंने इंटरव्यूज नहीं एक्चुअली उन्होंने बारे गलबात की जा रही थी उस तो बाद जी बिग बॉस वालों उन्होंने ऑफर आया तो वो जानते ने इदा ही ईशा रेखी सही नाम लै रही है मैं जेडे बादशाह दे एक्स वाइफ जिन्हां नाल हुणी हुणी डायवोर्स की खबर भी आई वह कॉन्ट्रोवर्सी चाहे उस तो बाद बिग बॉस चले गए उस तो बाद कनिका की कोई कॉन्ट्रोवर्सी तो नहीं सी पता नहीं जे होएगी भी तो मैनू इस बारे खबर नहीं हैगी बट हां कनिका भी थर्ड फेस ने जेडे पंजाब का जेडे बिग बॉस च रौनका ला रहे नहीं पर अजकल वायरल जिहड़ा कंटेंट चल रहा जियो हॉटस्टार जिहड़ा सब तो ज्यादा कंटेंट कट कट के पा रहा लव गिल दा
1: सारे दे ही पै रहा कंटेंट ता लव गिल दा ज्यादा वायरल हो रहा
0: सानू ज्यादा शो हो रहा
1: सो क्योंकि अपने नाल कह लो कि राबता थोड़ा ज्यादा मतलब कि फॉलोइंग दे विच सीगे तां करके पर आपा वोट भी कीती सी यार ऐसी गल नहीं क्योंकि एदा सीगा कि दूसरा जिहड़ा सीगा पार्टिसिपेंट ओ काफी टक्कर दा सीगा उम्मीद तो उही सी कि उही जाने
0: बॉम्बे वर्सेस पंजाब हो रहा सीगा
1: हाँ तो इस करके लव गिल नूं सिलेक्ट किया उन्होंने अपना कम सी वोट पाना हुण अगे असीं वैसे तो देख मैं तो घट ही देखदा
0: तुसीं हाँ बिल्कुल भी नहीं देखदे असीं
1: हाँ सो यह है कि चलो सैगमेंट दे विच असीं शामिल कीता सी बिग बॉस नूं क्योंकि पंजाब दे उत्थे भी गल हो रही सीगी ते जे पंजाब दी गल करिए तां मैं ऑलवेज ही साडे लिसनर नूं उस दिन भी शेयर कीती सीगी शेरे पंजाब लीग बारे भी मैं शेयर कीता सीगा कि तुसीं यूट्यूब दे उत्ते ओह स्ट्रीम हो रही है लाइव तुसीं देख सकदे हो पहली कोई एड्डी वड्डी लीग है जिहड़ी यूट्यूब दे उत्ते स्ट्रीम हुंदी है रोज दा 13 to 15 lakh 25 lakh 30 lakh बंदा भी ते ज्यादा इंडिया दी ऑडियंस चलो है ही है कैनेडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा देख रही है सो बहुत वड्डी गल है पंजाब दा अपना आईपीएल कह सकते हैं इनू ते रह गया जी दो मैच ते फाइनल दे विच हुण 13 तरीक नू फाइनल है तुसी सारे ने एंजॉय करना है
0: जी परम कक्कड़ जी नू वर्ड्स फाइनली लब चुके ने कहंदे हाउ आर यू
1: असि
0: बिल्कुल ठीक ठाक है जी सो दोस्तों मित्रों साथियों अगेन ही कहूंगी जिन्होंने हजे तक हाजरी नहीं लवाई लवा सकते क्योंकि नैक्सट आवर च आपां जंप करन वाले आ हुण इस तो बाद आपां नैक्सट आवर च ही मिलेंगे क्योंकि तकरीबन 10 मिनट रह गए ने 604-591-9311-604-592-9311 ये साडा नंबर है जिसे तुसी मैसेज करना है क्योंकि अज लग रहा जी तड़का
1: बिल्कुल आराम
0: अमरिंदर गिल की आवाज सुन दे जी अजॉय।

0: तू ही बस। If you want to advertise your business on Red FM, contact us at 604-598-9311.
1: फ्राइडे नाइट थी, मेरे दोस्त ने कहा कि वो मुझे लेने आएगा और हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएंगे। मैं इंतजार करता रहा और फिर एक फोन आया, मेरे दोस्त की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिस गाड़ी ने मेरे दोस्त को टक्कर मारी उसके ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। आखिर लोग शराब पीकर गाड़ी क्यों चलाते हैं?
2: शराब पीकर गाड़ी चलाने से आप अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अ मैसेज फ्रॉम रेड एफएम।
3: किसी भी कानूनी मुश्किल नाल निजठण लई सही वकील दी चोण बहुत जरूरी है। अते संगेड़ा संदर लॉ ग्रुप है एक भरोसेयोग नाम। इस दे तजर्बेकार अते सूझवान वकील हर कानूनी पेचीदगी दा हल जानदे हन अते तुहानू इंसाफ दवाउणा इन्हां दा पहला फर्ज है। ICBC रियल एस्टेट कंपनीज, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, बिजनेस खरीदण या वेचण लई इन्हां दी टीम नू संपर्क करो। कॉल परिंदर संगेड़ा, पुनीत संदर 604-543-8484, यूनिट 201-12565, 88 एवेन्यू सरी। संगेड़ा संदर लॉ ग्रुप।
4: कारां दा भंडार है बसंत मोटर्स, ईमानदारी दा व्यापार है बसंत मोटर्स। कस्टमर नूं मेहमान वांग प्यार देने बसंत मोटर्स वाले। छोटियां वड्डियां गड्डियां दे सुपने शिंगार देने बसंत मोटर्स वाले। बेहतरीन सर्विस देण दे इरादे दा नां है बसंत मोटर्स। तुहाडे सफर नूं खुशहाल कर देण दे वादे दा नां है बसंत मोटर्स। मैं इन्हां गल्लां दा गवाह हां भैण जी ते मेरे प्यारे वीर। बसंत मोटर्स नंबर 1 है, सच कहंदा राणा रणवीर।
5: बसंत मोटर्स, 163rd एंड फ्रेजर हाईवे।

0: Red FM.
1: Red FM has social media. Go to redfm.ca to find out more. This is the late night show on Red FM.
2: जी हाँ, तो सुन रेड एफएम ते मैं हाँ थोड़े नाल अमन
3: ते मैं हाँ थोड़े नाल सिमर। की हाल चाल दोस्त
2: बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उन्हां दी जगह ते मैं बोलते नहीं जो तुसी हाल चाल पूछते हो। टाइम अपने कोल कितना रह गया दसो, गैस करो। फोन वाल देखन लग गए देखी।
3: टाइम साडे कोल रह गया जी तकरीबन अद्धा घंटा।
2: बड़े सियाने जे लोकां नूं कहिंदे शपथ खाओ भाई चैट जीपीटी नूं पुछना, ते मैं ते वधी वी टाइम कितना होया दसो मेरे सामने फोन दे के।
3: मैं चैट जीपीटी थोड़ी पुछया।
2: ओके ते परम गगन जी कहिंदे ने, अच्छा उन्होंने पहला पढ़ लिया मैसेज। ओके हरभजन अटवाल जी, थोड़ा सेकंड सॉन्ग वी आई होप तुसी बहुत इंजॉय कीता होगा। पॉल संधू जी कहिंदे ने आंसर इज जी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। अमित जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिता। हरप्रीत जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिता। पाल थियारा जी कहंदे ने ओके सत श्री अकाल अमन ते सिमर।
3: सत श्री अकाल जी, उन्होंने रंजीत बाबा दे गाने दी फरमाइश
2: बरकत। यस ओके 0092 तो मैसेज आया, उन्होंने जवाब बिल्कुल सही दिता। साडे नवे दोस्त बन गए ने जसविंदर ऋषि।
3: क्या बात है
2: जी,
3: क्या बात है। सारे ने जवाब बिल्कुल सही आ रहे। सो दसना चाहुंदे आ तुहानू बुझारत, मैं रिपीट करूंगा, सारे जवाब पढ़ दो एक बारी।
2: जवाब पढ़ दवा
3: मतलब की जेड़े आए हुए जवाब।
2: अच्छा ओके गुरजीत जी कहते हेलो मुंजी एंड सिमर जी। हेलो जी गुरजीत जी, सत श्री अकाल, ऑलवेज ग्रेट शो एंड एंजॉयड अलॉट।
3: जी जी जी शुक्रिया, मेहरबानी। सो
2: बहुत बहुत शुक्रिया है जी, ते आंसर उन्हां दा बिल्कुल सही है,
3: ज्यादा सही आ रहा
2: है। पवन जी दा भी बिल्कुल सही है, अमित पाल जी दा भी बिल्कुल सही है। सो गलत कीदा है वो तुसी पढ़ो।
3: गलत हैगा जी लोड हो रहे है जी मैसेज एक बारी।
2: ओके जब तक तुसी गलत वाले तुसी पढ़ने, सही वाले मैं पढ़ूंगी। जगजीत हुजा जी कहंदे ने गुड अमन जी एंड सिमर जी, गुड वेरी गुड।
3: प्रदीप सिंह जी कहंदे जी शलगम शलगम।
2: नहीं शलगम दी भी गंध तां हुंदी, गंध हुंदी
3: नहीं यार,
2: नहीं हुंदी शलगम, ओदा कौड़ी हुंदी आ।
3: तुसी गलत जवाब दिता जी, शलगम वैसे नेड़े तेड़े ही हैगे तुसी, पर गलत जवाब।
2: अच्छा जगजीत हुजा जी, तुसी किथे रह गए, किथे कहां गए, कहां गए? तुसी पिछे कह रहे सी थोड़ा मूड खराब है, मैं तां थोड़ा हाल चाल पुछिया किवें हो, ठीक ठाक हो? ओके ठीक है। सो दोस्तों मित्रों साथियों, तुसी जेड़े जवाब दे रहे हो बहुत बहुत शुक्रिया। जेड़े विच विच गलत जवाब भी आ रहे हो वो भी बड़ा मजा आंदा पढ़ के, सही वाला तां आंदा ही आंदा। सो हुण आपां गाना सुनना जी कब्जा।
3: जी बिल्कुल
2: कब्जा, मैनू लभिया नहीं इसलिए कब्जा ही सुनना।
3: किना दी आवाज दे विच?
2: मनमोहन वारिस।
3: ओके ठीक है, मैं भुलेखा बब्बू मान लगी जांदा।
2: ओके
3: सो बिल्कुल एंजॉय करदे, एक बार रिपीट कर देना। गोल हूं पर गेंद नहीं, लाल हूं पर सेब नहीं, जो भी मुझको खाते हैं मेरी सदा गंद फैलाते हैं।
2: ओके ठीक है। पिंदर माहिल जी कहते ने हेलो टू बोथ, सत श्री अकाल जी, कैन यू गाइज प्लीज प्ले। जी बिल्कुल प्ले करने लिए बैठे हैं बलकार सिद्धू दा सॉन्ग चरखे। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। यादविंद मांगर जी ने तो फोटो भी भेज दी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो जी इंजॉय करते गाना, जब तक तुम फटाफट जिन्हें हजे तक जवाब नहीं दिता फटाफट दे दो। नंबर मैं रिपीट कर दिनी हूं 6045919311। ते तड़का ट्रेंडिंग वाले दे विच आपां सारे टॉपिक कवर कर लिया।
3: छे गोलियां चलाईयां गईयां हैं ना, ते रॉयल रूस गड्डी दे उते, पर उन्हां नाल बड़ा मन भागा इंसीडेंट होया। सो इस करके हुण मैनूं इदां लगदा कि बहुत ही मशहूरी भी बंदे नूं तंग करदी है ना।
2: यार किन्ना जेड़े बहुत ज्यादा फेमस हुण तुसी मैनूं कहंदे रहंदे हो कि इंस्टाग्राम ते अमन जी कुछ पाया करो एक्टिव होवो थोड़ा सोशल मीडिया ते, मैं तां ही नहीं हुंदी, मुड़ के एवें हुंदा वा।
3: ओ यार
2: मेरे कोल तो रॉयल रॉयस भी नहीं हैगी।
3: तां मैं दसना चाहुंदा तुसी पाओ की पता तुहाडे गोली ना मारनो कि हां तुसी यार इन्ने कमाल दे होस्ट हो, यार इन्हां दे गोली नहीं मारनी हैगी।
2: ओके बट यार सीरियसली बुरा लगता ना कि कोई इंसान है जेड़ा किन्नी मेहनत करदा, देखो किन्ने साल हो गए एमी विर्क नु भी है ना इस फील्ड दे विच।
3: बिल्कुल काफी सारी फिल्मां, काफी सारे लाइव शोज, काफी हुण लाइव शोज कर रहे अपना नाल दी दसना जना, काफी सारे गीत उहनां दे। सो उहनां नाल इदां होना एक बहुत ही मंदभागी गल है, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ।
2: ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਬਸ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਪਰ ਯੂ ਨੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ।
3: ਫਿਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹਨਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਆਖਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਖੁਦ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ,
2: ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੋਮਾਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇੱਕੋ ਦਮ।
3: ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ। ਬਸ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੋਣ ਹੀ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ ਟਾਲ ਸਕਦਾ,
2: ਬਿਲਕੁਲ
3: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ।
2: ਸੋ ਪਰਮ ਗੱਗਲ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਝਾਰਤ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋਗੇ?
3: ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਬੁਝਾਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੋਲ ਹੂੰ ਪਰ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਹੂੰ ਪਰ ਸੇਬ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਝਕੋ ਖਾਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੰਧ ਸਦਾ ਫੈਲਾਤੇ ਹੈ।
2: ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਵਾਓ,
3: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ,
2: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਪਰਮ ਗੱਗਲ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਫੇਲ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
3: ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੋਟਪੈਡ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵਾਓ ਆ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ।
2: ਸੋ ਜੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਇੰਜੋਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਓਕੇ, 1024 ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਸਟਲੀ। ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਦ ਸੌਂਗ।

जे रेड एफएम है तुहाडी पसंद ते वसदा है तुहाडे दिल विच तां हुण ए गल दसो अपने अंदाज विच 20 सेकंड दा म्यूजिक वाला जिंगल बनाओ या जिंगल दे कैची लिरिक्स भेजो सेलेक्ट कीते जिंगल रेड एफएम ते प्ले हुंदे रहणगे तुहाडे नां दे नाल सो माइक चक्को जिंगल बनाओ ते दसो दुनिया नूं रेड एफएम तुहाडे लई की है 15 सितंबर तो पहला अपना जिंगल सबमिट करो contests@redfm.ca ते रेड एफएम तुहाडी आवाज तुहाडी वाइब तुहाडा जिंगल

0: यूक्रेन ने हुण रशिया दे नाल मिजाइल हमला तेज कीता है, ड्रोन अटैक वधाए ने, उन्हां दीआं रिफाइनरीज़ नूं एयर डिफेंस नूं काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। तो इस तों बाद उह पहली बार साल तो बाद आए ने जेलेंसकी, तो कैनेडा हुण होर की हैल्प उन्हां नूं अनाउंस करता है इसका पता अज दुपहर तक लग जाएगा। प्रीवियसली सरकार ने साडी ने कहा सी कि असीं $2 बिलियन मिलटरी एड दे विच उन्हां नूं देवांगे, तो उहदा उस तो अगला रूप की होगा उसका पता अज लगन की संभावना है। साडे फैडरल फाइनांस मिनिस्टर फ्रांसवा फिलिप शैंपेन ने कहा है कि कैनेडा दी इकनोमिक ग्रोथ की जदों असी चर्चा करते हैं तो उहदे विच अल्बर्टा फ्रंट एंड सेंटर है, कि मोहरे भी गभे भी सेंटर का जलवा अल्बर्टा का ही है। कैनेडा दे इकनोमिक ग्रोथ दे विच अल्बर्टा इज फ्रंट एंड सेंटर कहा है फ्रांसवा फिलिप शैंपेन ने, जिहड़े साडे देश दे फाइनांस मिनिस्टर ने। एडमिंटन चेंबर ऑफ कॉमर्स नूं संबोधन करदिआं कार्ल फैडरल फाइनांस मिनिस्टर ने कहा कि कैनेडा दे विच अजे भी अल्बर्टा पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ दे विच बैठा है, अजे भी ताकत की पोजिशन है इसकी। उन्होंने कहा कि नैशनल यूनिटी सानू चाहिए है, तो अल्बर्टा का फॉल रेफरेंडम फेल होना चाहिए है। आपां जोर दे के अल्बर्टा नूं कैनेडा दे नाल ही रखण वास्ते पोलिंग करन दी जरूरत है। उन्होंने कहा कि सब तो वड्डी एनर्जी पार्टनर ऑफ चॉइस कैनेडा बन रहा है ग्लोबली। लोकी चाहते ने कि असी कैनेडा दे नाल अपना पार्टनर ऑफ चॉइस बनाइए तां कि साडे कोलों गैस ते ऑयल एंड गैस दोनों की सप्लाई लै सकन, ते इस तो ज़्यादा कैनेडा कदे भी स्ट्रोंगर नहीं होया है। उन्होंने कहा जी कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप दीआं पॉलिसीज़ कैनेडा नूं तोड़न वालियां ने, कैनेडा नूं नुकसान पहुँचाउंदियां ने। नाल ही उन्होंने ये नहीं कहा कि असी ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट नूं एक हथियार वजों वरतांगे, इस गल दे उत्ते उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, पर उन्होंने जोर दे के ये गल आखी है कि असी कैनेडियन ट्रेड नूं US तो बाहर लिजा के डाइवर्सीफाई करन दी भरपूर कोशिश कर रहे हाँ। प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने एक बार फिर वार्निंग दिती है कि जिहड़े टैरिफ लग रहे ने ते टैरिफां दी लड़ाई चल पई है, इहदे नाल इनफ्लेशन वधेगी ते बिजनेसिस रुकणगे, जॉब्स नूं नुकसान हो सकता है। सानू डिप्लोमेसी दा रस्ता अपनाउणा चाहीदा है, एक बार फिर डैनियल स्मिथ ने अपना पक्ष दोहराया है। उधर प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने एक होर वड्डा यू टर्न लेंदिया होया, जिहड़ियां पॉलिसीज जस्टिन ट्रूडो ने लागू कीतियां सन एनर्जी नूं लैके, उस दे विच फिर वड्डा यू टर्न दिता है सरकार नूं। ते उन्होंने कहा कि ट्रूडो एरिया दे विच जिहड़ियां एनवायरमेंट रिव्यू जिहड़े लागू कीते गए सन, बड़े सख्त रूल उन्होंने बना दिते सन, उन्हां नूं स्केल बैक कीता जा रहा है, उन्हां नूं घटाया जा रहा है।
1: दिस इज अ रिपीटेड शो।
0: बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नूं हुण फैडरल इंपैक्ट असैसमेंट एक्ट दी प्रोसैस विचों बाहर कढ़िया जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो उस वेले इंपैक्ट असैसमेंट एक्ट लियाए सन, जिन्हों नो मोर पाइपलाइन एक्ट भी कहिंदे सन कंजरवेटिव पार्टी वाले। नो मोर पाइपलाइन के होर पाइपलाइन बननी नहीं देनी, इस तरह दीआं शरायत इस तरह दीआं शर्तां उन्होंने रख दित्तियां सन, ते हुण उस तों उस एक्ट विचों बाहर कढ के कारनी उन्होंने इन्हां सारे प्रोजेक्टां नूं कैनेडा एनर्जी रेगुलेटर नूं दे दिता है। एनर्जी रेगुलेटर इन्हां दा फैसला करेगा कि ये प्रोजेक्ट आपां चलाउणे ने कि रोकणे ने। सो एक्ट दे तहत सारी पाबंदियां लग गईआं सन, उन्हां नूं एक्ट विचों बाहर कढ के कैनेडा एनर्जी रेगुलेटर दे हत्थां विच देण दा मतलब है कि सरकार ने वड्डी ढिल दे दित्ती है कि जिहड़ी सख्ती जस्टिन ट्रूडो कर गए सन उन्हां नूं बरकरार नहीं रख्या जाएगा, ते असीं ढिल्लां दे नाल कई प्रोजेक्ट उस दे एक्ट विचों बाहर कढ के रेगुलेटर नूं दे दिते ने, एनर्जी रेगुलेटर नूं, तां कि ओह फैसला करे कि इह प्रोजेक्ट अग्गे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय खबरां विच पाकिस्तान दे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साउदी अरब दे उत्ते हूती जिहड़े विद्रोही ने उत्थों दे हूतियां दे अटैक लगातार जारी ने, ते इहदे नाल मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट नूं एक्टिवेट कीता जा सकदा है, क्योंकि ये एग्रीमेंट होया सी तीन मुल्कां दे दरम्यान जिहदे विच पाकिस्तान साउदी अरेबिया ते तुर्की शामिल सन, ते इन्हां तिना मुल्कां ने ये आपस विच फैसला कीता सी कि इन्हां तिना विचों किसी भी एक दे उत्ते होया हमला तिना दे उत्ते हमला गिणिया जाएगा, ते फिर उसका मुकाबला डट के ते रल के कीता जाएगा। हुण होया ये है जी कि हूतियां ने ये अटैक कर दिता है, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

0: तो ये कॉम्पोजिशन जो है राग भैरव के ऊपर है
1: जी,
0: आधारित, लेकिन राग भैरव कैसा है उसका वर्णन है, और इसको हम लोग कहते हैं कि लक्षण गीत
1: जी।
0: राग के जितने लक्षण है समय के आधार पे, उस राग के चरित्र के ऊपर, उसके जो प्राकृत वो दिखने में कैसा है, वो सब मिला के एक वर्णन होता है उस कॉम्पोजिशन में, जिसको हम लोग कहते हैं लक्षण गीत
1: जी।
0: ये हर राग का ही होता है, और दिस पीस द मास्टर पीस वॉज कंपोज्ड बाय नानददन पंडित रामाश्रय झा जी, और उनके पेन नेम है राम रंग जो
1: जी,
0: इसमें है
1: जी। इसमें था उसका।
0: तो ये एकदम इतने कंप्लीट एक कॉम्पोजिशन है जिसमें भैरव का पूरा रूप दिखता
1: दिखा है,
0: या
1: बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: थैंक यू।
1: तो आखिर में आप दिवस मेहता जी क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों के लिए जी?
2: मेरे ख्याल से इतना अच्छा एक माहौल बन गया है, इंद्राणी जी ने जिस तरह से
1: जी, जी।
2: राग भैरव की वर्णना की उनके गायन के साथ, इसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, यही बोलूँगी कि 11, 12 और 13 तारीख जो एक म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा होने वाला
1: जी,
2: है
1: जी, जी।
2: जहाँ पे इतने सारे म्यूजिशियंस आ रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं, कैलगरी के हर एक श्रोता आए, हरजीत जी के लिए आए, सर्वकाल के लिए आए, और आके हमें आशीर्वाद दे, और ये जो जर्नी है, दिस जर्नी इज ऑन गोइंग, इसका कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत हो सकता है पर अंत नहीं है, इसमें जारी रहे और जस्ट एंजॉय एंड सेलिब्रेट द आर्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक
1: जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ शामिल होने के। आपका भी मैसेज चाहिए हमें?
0: यही प्रार्थना है, यही है कि हम सब लोग आए हैं जिनके लिए जो सर्वकाल, द नेम इज सेज एवरीथिंग, तो हरजीत जी के ये प्रार्थना, हरजीत जी के ये कोशिश, जो हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, और आप सब लोग आइए टू सेलिब्रेट द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इट्स अ जॉय, इट्स अ एक्सप्रेशन जो कि हम सब में बांटना चाहते हैं, और आप ही के आने से हम लोग वाइब्रेट होते हैं
1: जी, बिल्कुल जी।
0: तो ये इट्स अ वेरी इंटरट्वाइंड कि अच्छे कलाकार को अच्छे श्रोता चाहिए, और एक दूसरे को यही सार्थकता, हाँ बिल्कुल। तो प्लीज आइए और हम लोग सब मिलके ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, द जॉयस फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक, इसको हम साकार बनाएं
1: जी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, धन्यवाद,
0: नमस्ते।
1: ते अखीर दे विच हरजीत,
3: हाँ जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ऋषि जी, आप जी ने टाइम दिता अज दे प्रोग्राम च, जयंता जी का, धर्मप्रीत का, सारे का, सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सानू यही उम्मीद है कि जिन्हें भी संगीत नू प्यार करन वाले लोग हैं तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनो, तो इस प्रोग्राम दे विच आके अपना आशीर्वाद दिओ, क्योंकि एक जिहड़ा हुंदा है वो अलग चीज़ तो देखा जाता है, तो जदों एक सिख दो साध संगत पंजी परमेश्वर वाला काम जदों बन जाता है तो उदों ये चीज़ होर भी बहुत प्यारी खूबसूरत बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आओ इस प्रोग्राम दे विच अपना आशीर्वाद दिओ।
1: थैंक यू जी।
4: ZKYR 106.7 FM. This is Red FM Calgary.

0: Good FM.
1: You are listening to CKYR 106.7 FM, Calgary.
2: एक ओंकार सतनाम कैता पुरख निरपा निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै पंग गुर प्रसाद जप आद सच जगात सच हैपी सच नानक होसी पी सच सोचा सोच न होवे जे सोची लखवार चुपै चुप न होवे जे लाए रहा लिवतार पुख्या पुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस स्यानपा लख होहे ता एक न चलै नाल किव सच्यारा होइया किव कूड़ै तुट्टै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिख्या नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे अजाई हुक्मी होवन जीय हुक्म मिला वड़ियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्सीस एक हुक्मी सदा पवई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोय गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जानै निसान गावै को गुण वड़ियाचार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह

कपाहे जगह जगंतर खाहि खाहे हुक्मि हुक्म चलाए राहो नानक विगसा वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखे मंगहे देहे देहे दात करे दातार फिर के अज्ञा रखिया जित दिशा दरबार महो के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड़ियाई विचार कैमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुनी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर ला जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जय हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बजाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा विन पाने के नाय करी जेते सेठ उपाय वेखा विन कैमा के मिला ली मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बजाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जग चारे आर जा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चला सब कोय चंगा ना रखाय कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवे तो वात न पुछा के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोई न सुजे जे तिस गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया तैत तवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सक्या काल नानक भक्ता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया ईसर वहमा इंद सुनया मुख सलाहन मंद सुनया जोग जगत तन पेद सुनया शास्त्र सिमृत वेद नानक भक्ता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठसठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावहे मान सुनया लाग्या सहज त्यान नानक भक्ता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुना के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावहे राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भक्ता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पिछा पछताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का वह कैन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ना सोत हो वह मन बुद्ध मन्ना सगल पवन की सुध मन्ना मोहे चोटा ना खाए मन्ना जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ना मारक ठाक न पाए मन्ना पथ से उपाय कट जाए मन्ना मग न चल्ला पंथ मन्ना तम से ती सन बंद ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाना मन कोय मन्ना पावे मोख द्वार मन्ना परवारा सादार मन्ना तरा तारे गुरसिख मन्ना नानक पवे न पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाना मन कोय पंच पैवान पंच पैदान पंचे पावे दय गहमान पंचे सोहे दय राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करा विचार करते क्या कहना नाही सुमार तौल तम दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझा होवै सचियार तबला ऊपर के तापार तैती होर परा होर तेसे पार तला कवरंजोर जी जात रंका के नाव सबना लिख्या वुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोय लेखा लिख्या केता होए केता तान स्वालिहो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिससे होए लख दरियाओ कुदित कवन कहा विचार वार्यन जावा एक वार ज्योतत पावै सई पलिकार तुसदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
असंक भक्त गुण ज्ञान विचार, असंक सती असंक दातार, असंक सूर मोह पक्षार, असंक मौन लिवलायतार, कुदरत कवन कहा विचार, वार्य न जावा एक बार, जो तुत पावै सही पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंक मूर्ख अंधकोर, असंक चोर हराम घोर, असंक अमर कर जाहे चोर, असंख गलवट हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पाख खाहे, असंख निंदक सिर करहे पार, नानक नीच कह विचार, वारे न जावा एक वार, जो तो पावै सही पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलनवान, अखरा सिर संजोग विखान, जिन एह लेखे तिस सिर नाहे, जिव फुर माए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, बिन नावै नाही को थाओ, कुदित कवन कहा विचार, वार्य न जावा एक वार, ज्योतत पावै सही पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, परिय हथ पैर तन देह, पानी तोता उतर सुखेह, मूत पलीति कपड़ होए, देसा बून लिया ओह तोए, परिया मत पापा कै संग, ओह तोपै ना वै कै रंग, पुन्नी पापी आखन नाहे, कर कर करना लिखला जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी अब हो जाहो, तीरथ तप दया ततदान, जेको पावै तिल का मान, सुनया मनया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मलनाओ, सबगुन तेरे मैं नाही कोए, विनगुन कीते भक्त न होए, स्वास्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सि रुति माहो कवन, जित हुआ आकार, वेल न पाइया पंडिती, जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादियां, जे लेखन लेख कुरान, थित वार न जो की जाना, रुत माहो न कोई, जा कायता से ठीको साजे, आपे जाना सोई, किव कर आखा किव सालाही, क्यों वाइनी किव जाना, नानक आखन सबको आखै, एक दू एक स्याणा, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै, नानक जेको आपो जाना, अग्या गया न सोहै, पाताला पाताल लख, अगासा अगास, ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कहन एक वात, सैस अठारह कहन कतेबा, असलू एक तात, लेखा होय त लिखिया, लेखा होय विनास, नानक वड्डा आखिया, आपे जाना आप, सालाही सालाह, एती सोयत न पाईया, नदिया अत्ता वाह, पवे समुंद न जानी है, समुंद सह सुल्तान, गिरह सेती माल तन, कीड़ी तोल न होवनी, जेतस मन हो न विसरह, अंतना सिफती कहन न अंत, अंतना करना देन न अंत, अंतना वेखन सुन न अंत, अंतना जापै क्या मन मंत, अंतना जापै कीता आकार, अंतना जापै पारावार, अंत कारण केते बिललाहे, ताके अंत न पाए जाहे, एह अंत न जाने कोए, बहुता कहिया बहुता होए, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड़ ऊंचा होवै कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड़ आप जाने आप, नानक नदरी कमी दात, बहुता कायम लिख्या न जाए, वड्डा दाता तेल न तमाए, केते मंगहे जोद अपार, केते गणित नहीं विचार, केते खप तुटहे विकार, केते लाला मुकर पाहे, केते मूर्ख खा

तुहनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा तैम द्वारे गावे चित गुप्त लिख जानहे लिख लिख तैम विचारे गावे ईसर बैमा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इदासन बैठे।

पवन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सोयगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबलसूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वरपंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे जोदत पावन रिते तेरे भक्त रसाले होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई हैपी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख्या कीता अपना जिव तिस दी वड़ियाई ज्योतिस पावै सोई कैसी हुक्म न कर न जाई सो पथ साहु सहा पथ साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सम पथ चोली त्यान की करहे बिपूत खिंता काल कुआरी काया जुक्त डिंडा परतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जगजीत आदेश तसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुक्त ज्ञान दया पंडारन कट कट वाजहे नाद आप नाथ नाथी सब जाके रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दोय काय चलावहे लेखे आवहे पाग आदेश तसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका मई जोगति व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाई दीवान जिव तिस पावै तवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेख्या ओना नद न आवै पोहता एह विडान आदेश तसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोय लोय पंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेख्या सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दू जी पौ लख होहे लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीस एत राहे पथ पवड़िया चढ़िया होय इकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाया कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मन नह जोर जोर न राज माल मनसोर जोय न सोयति ज्ञान विचार जोय न जुगति छुट्टै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोय राती रुति थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच तैती थाप रखी तम साल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कैमी कैमी होय विचार सच्चा आप सच्चा दरबार थिता सोहन पंच परवान नदरी कैम पवै निशान कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए तैम खंड का एहो तैम ज्ञान खंड का आखो कैम केते पवन पानी वैसंतर केते कान महेश केते बायमे काढ़त कड़ी है रूप रंग के वेस केतिया कैम भूमि मेर केते तू उपदेस केते इंद चंद सुर केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ

तिय सोयते सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथा नाद विनोद कोट आनंद सम खंड की वाणी रूप तिथा काढ़त कड़िया बहुत अनूप ताकिया गलना कथिया न जाहे जेको कह पिछा पछताए तिथा कड़िया सोयत मत मन बुद्ध तिथा कड़िया सुरा सिदा की सुध कर्म खंड की वाणी जोर तिथा होर न कोई होर तिथा जोध महाबल सूर तिनमह राम रहया परपूर तिथा सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उहे मरहे न ठागे जाहे जिनका राम वसा मन माहे तिथा भक्त वसहे के लो करहे आनंद सचा मन सोय सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथा खंड मंडल वरपंड जेको कथा त अंत न अंत तिथा लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवा तिवकार वेखै विकसा कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा तीरज सुनियार अहन मत वेद हथियार पौ खला अग्न तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल कड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कायम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पानी पिता माता तैत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेला सगल जगत।

नमस्तं अपेखे, नमस्तं अलेखे, नमस्तं अकाये, नमस्तं अजाये, नमस्तं अगंजे, नमस्तं अपंजे, नमस्तं अनामे, नमस्तं अठामे, नमस्तं अकर्मं, नमस्तं अतर्मं, नमस्तं अनामं, नमस्तं अतामं, नमस्तं अजीते, नमस्तं अपीते, नमस्तं अबाहे, नमस्तं अटाहे, नमस्तं अनिले, नमस्तं अनादे, नमस्तं अछेदे, नमस्तं अगादे, नमस्तं अगंजे, नमस्तं अपंजे, नमस्तं उदारे, नमस्तं अपारे, नमस्तं सोएक्या, नमस्तं अनेक्या, नमस्तं अपूते, नमस्तं अजूपे, नमस्तं निरकार्मे, नमस्तं निरबार्मे, नमस्तं निरदेशे, नमस्तं निरपेशे, नमस्तं निरनामे, नमस्तं निरकामे, नमस्तं निरताते, नमस्तं निरकाते, नमस्तं निरतूते, नमस्तं अपूते, नमस्तं अलोके, नमस्तं अशोके, नमस्तं निरतापे, नमस्तं अथापे, नमस्तं त्रिमाने, नमस्तं निदाने, नमस्तं अगाहे, नमस्तं अबाहे, नमस्तं त्रिवर्गे, नमस्तं असर्गे, नमस्तं प्रभोगे, नमस्तं सुजोगे, नमस्तं अरंगे, नमस्तं अपंगे, नमस्तं अगमे, नमस्तास्तनमे, नमस्तं जलाश्रे, नमस्तं निराश्रे, नमस्तं अजाते, नमस्तं अपाते, नमस्तं अमजवे, नमस्तास्त अजवे, अदेशं अदेशे, नमस्तं अपेसे, नमस्तं निरतामे, नमस्तं निर्वामे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वरूपे, नमो सर्वपूपे, नमो सर्वखापे, नमो सर्वथापे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वपाले, नमस्तस्त देवा, नमस्तं अपेवा, नमस्तं अजानमे, नमस्तं सुवनमे, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, नमो सर्वरंगे, नमो सर्वपंगे, नमो काल काले, नमस्तस्त दयाले, नमस्तं अवर्णे, नमस्तं अमर्णे, नमस्तं जरारंग, नमस्तं कृतारंग, नमो सर्वतंदे, नमोस्त अबंदे, नमस्तं निसाके, नमस्तं निर्बाके, नमस्तं रहीमे, नमस्तं करीमे, नमस्तं अनंते, नमस्तं महंते, नमस्तस्त रागे, नमस्तं सुहागे, नमो सर्वसोखं, नमो सर्वपोखं, नमो सर्वकर्ता, नमो सर्वहर्ता, नमो जोग जोगे, नमो पोग पोगे, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वपाले, चाचरी छंद त्वा प्रसाद, अरूप हैं, अनूप हैं, अजू हैं, अपू हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अनाम हैं, अकाम हैं, अते हैं, अपे हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अल्लाह हैं, अजाह हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंब हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं, भुजंग पर्यात छंद, नमो सर्वमान्ये समस्ती निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद वादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, प्रपंगी प्रमाथे समस्ति विपूते, कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शास्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अपोगी अपोगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं स्नानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी, अनुपे अरूपे समस्तल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा ब्रेद करता, अधो उर्द अर्दं अगं ओग हरता, परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अछेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तास्तामं।
तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं थले हैं अपीत हैं

0: अपे हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अपेस हैं, पुजंग पर्यात छंद, अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमस्त्वंग निर्नाथे, नमस्त्वंग प्रमाथे, नमस्त्वंग अगंजे, नमस्त्वंग अपंजे, नमस्त्वंग अकाले, नमस्त्वंग अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वपोगे, नमो सर्वजीतं, नमो सर्वपीतं, नमो सर्वज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्वमंत्रं, नमो सर्वजंतरं, नमो सर्वदृशं, नमो सर्वकृशं, नमो सर्वरंगे, त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे, अखिजे अपिजे, समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे, ककर्मं प्रणासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी, चारपट छंद त्वा प्रसाद, अमृत कर्मे, अमृत धर्मे, अखल जोगे, अचल भोगे, अचल राजे, अटल साजे, अखल तर्मं, अलख कर्मं, सर्वं दाता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं पाने, सर्वं माने, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं भुक्ता, सर्वं जुगता, सर्वं देवं, सर्वं पेवं, सर्वं काले, सर्वं पाले, रुआल छंद त्वा प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त, अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव, अपेव आद उदार, सर्व पालक, सर्व कालक, सर्व कोपन काल, जतर तत्र विराजही, अवतूत रूप रिसाल, नाम ठाम न जात जाकर, रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूर्त, अजोन आद असेख, देश और न पेश जाकर, रूप रेख न राग, जतर ततर दिशा विसा होय फैल्यो अनराग, नाम काम बिहीन पेखत, ताम हूँ नह जाहे, सर्वमान सर्वत्र मान, सदैव मान तताहे, एक मूर्त अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक, देव पेव न जानही, जेह बेद और कतेब, रूप रंग न जात पात, सो जानही कह जेब, तात मात न जात जाकर, जन्म मरण बहीन, चक्र बकर फिरा चतर चक, मानही पर तीन, लोक चौदह है के बिखै, जग जापई जेह जाप, आद देव अनाद मूरत, थाप्यो सबै जेह थाप, परम रूप पुनीत मूरत, पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रच्यो स्वयं पव, गढ़न पंजन हार, कालहीन कला संजुगत, अकाल पुरख अदेस, धर्म ताम सो परम रहत, अपूत अलख अपेस, अंग राग न रंग जाकह, जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन, मुक्त दा एक काम, आप रूप अमीक अनोस्तत, एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व पंजन, आद रूप असूत, अंगहीन अपंग अनात्म, एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक, सर्व को प्रतपार, सर्व गंता सर्व हंता, सर्व ते अनपेख, सर्व शास्त्र न जानही, जेह रूप रंग अर रेख, परम वेद पुराण जाकह, नेत पाखत नित, कोट सिमृत पुराण शास्त्र, न आवही वह चित, मदपार छंद त्वा प्रसाद, गुण गण उदार, महिमा अपार, आसन अपंग, उपमा अनंग, अनपौ प्रकाश, निस्दिन अनास, आजान बाहु साहान साहु, राजान राज, पानान पान, देवान देव, उपमा महान, इंद्रान इंद्र, बालान बाल, रंकान रंक, कालान काल, अनपूत अंग, आपा अपंग, गतमित अपार, गुण गण उदार, मुन गण प्रणाम, निरपय निकाम, अतदुत प्रचंड, मित गत अखंड, आलस्य कर्म, अदृश्य धर्म, सर्वा प्रणाड्य, अनडड बाड्य, चाचरी छंद त्वा प्रसाद, गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं करियं निर्नामे अकामे, पुजंग पर्यात छंद, चतर चक्र कर्ता, चतर चक्र हर्ता, चतर चक्र दाने, चतर चक्र जाने, चतर चक्र वर्ती, चतर चक्र पायती, चतर चक्र पाले, चतर चक्र काले, चतर चक्र पासे, चतर चक्र वासे, चतर चक्र मान्य, चतर चक्र दान्य, चाचरी छंद, न सत्रह न मित्र, न परमंग न पितर, न कर्मंग न काय, अजन्मंग अजाय, न चित्र न मित्र, परे हैं पवित्र, प्रथिसा अदिसा अदृसा अकृसा, भगवती छंद त्वा प्रसाद, कथते के अछिज देसा, के अपिज पेसा, के अगंज कर्मा, के अपंज परमा, के अपिज लोका, के अदित सोका, के अवतूत वर्णा, के बेपूत करना, के राजंग प्रभा हैं, के तर्मंग तजा हैं, के आशोक वर्णा, के सर्वा अपर्णा, के जगतं कृति हैं, के छत्रं छत्री हैं, के ब्रह्मं स्वरूप है, अनपौ अनूप है, के आद अदेव हैं, के आप अपेव हैं, के चित्रं विहीन है, के एकै अधीन है, के रोजी रजाकै, रहीमै रहाकै, के पाक ब्याब हैं, के ग्याबल ग्याब हैं, के अफवुल गुनाह हैं, के साहान साह हैं, के कारण कुनिंद हैं, के रोजी देहांद हैं, के राजक रहीम हैं, के कर्मंग करीम हैं, के सर्वंग कली हैं, के सर्वंग दली हैं, के सर्वत्र मान्या, के सर्वत्र दान्या, के सर्वत्र गौना, के सर्वत्र पौना, के सर्वत्र देसा, के सर्वत्र पेसा, के सर्वत्र राजा, के सर्वत्र साजा, के सर्वत्र दीना, के सर्वत्र लीना, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देसा, के सर्वत्र पेसा, के सर्वत्र काला, के सर्वत्र पाला, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काजा, के सर्वत्र राजा, के सर्वत्र सोखा, के सर्वत्र पोखा, के सर्वत्र त्राणा, के सर्वत्र प्राणा, के सर्वत्र देसा, के सर्वत्र पेसा, के सर्वत्र मान्या सदावंग प्रदान्या, के सर्वत्र जाप्या, के सर्वत्र थाप्या, के सर्वत्र पान्या, के सर्वत्र मान्या, के सर्वत्र इंद्रा, के सर्वत्र चंद्रा, के सर्वंग कलीमा, के परमंग फहीमा, के आकल अलामा, के साहिब कलामा, के हुस्नुल वजू हैं, तमामल रजू हैं, हमेशल सलामा, सलीखत मुदामा, गनीमल सिकास्ता, गरीबल परस्ता, बिलंदुल मकाना, जमीनुल जमाना, तमीजल तमामा, रजुअल निदाना, हरीफल अजीमा, रजायक यकीना, अनेकल तरंग हैं, अपेद हैं, अपंग हैं, अजीजल निवाज हैं, गनीमल खिराज हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विपूत हैं, प्रपुक्त प्रभा हैं, सुजुक्त सुदा हैं, सदावंग स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तल सलाम हैं, सदावल अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओं आद रूपे अनाद स्वरूपै, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे, त्रिभर्गंग त्रिभादे अगंजे अगाधे, सुपंग सर्वपागे, ससर्वा अनुराग्य, त्रिपुक्त स्वरूप हैं, अछिज हैं, अछूत हैं, के नरकंग प्रणास हैं, पृथियल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदावंग सदा हैं, विपुक्त स्वरूप हैं, प्रजुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विपुक्त प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रजुक्त अनूप हैं, चाचरी छंद, अपंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अपूत हैं, अतूत हैं, अनास हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अपंध हैं, अपक्त हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, नचिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चारपट छंद त्व प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणंग, सर्वंग त्राणंग, सर्वंग कर्मंग, सर्वंग तर्मंग, सर्वंग जुगता, सर्वंग मुक्ता, रसावर छंद त्व प्रसाद, नमो नरक नासे, सदावंग प्रकाशे, अनंगंग स्वरूपे, अपंगंग विपूते, प्रमाथंग प्रमाथे, सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे, निर्बाध विपूते, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकामे, निरपंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनूपे, न पोत्रा न पुत्रा, न सत्रा न मित्रा, न ताता न माता, न जाता न पाता, न साकंग सरीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदावंग प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती छंद त्व प्रसाद, के जाहिर जहूर हैं, के हाजिर हजूर हैं, हमेशल सलाम हैं, समस्तल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुस्नो चराग हैं, के कामल करीम हैं, के राजक रहीम हैं, के रोजी देहांद हैं, के राजक रहिंद हैं, करीमल कमाल हैं, के हुस्नो जमाल हैं, गनीमल खिराज हैं, गरीबल निवाज हैं, हरीफल सिकन हैं, हिरासल फिकन हैं, कलंकंग प्रणास हैं, समस्तल निवास हैं, अगंजल गनीम हैं, रजायक रहीम हैं, समस्तल जुबा हैं, के साहिब किरा हैं, के नरकंग प्रणास हैं, बहिस्तल निवास हैं, के सर्बुल गवन हैं, हमेशल रवन हैं, तमामल तमीज हैं, समस्तल अजीज हैं, परंग परम ईस हैं, समस्तल अदीस हैं, अदेसल अलेख हैं, हमेशल अपेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमल कमाल हैं, के जुरत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजुब स्वरूप हैं, के अमितो विपूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग हैं, के अमितो अपंग हैं, मध्यपार छंद त्व प्रसाद, मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम, अर बर अगंज हर नर प्रपंज, अनगन प्रणाम मन मन सलाम, हर नर अखंड बर नर अमंड, अनुभव अनास मन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम, अनछिज अंग आसन अपंग, उपमा अपार गतमित उदार, जल थल अमंड दिस विस अपंड, जल थल महंत दिस विस बेअंत, अनुभव अनास त्रित तर तुरास, आजान बाहो एकैस दाहो, ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अनछिज गात अजिज न बात, अनचंज गात अनरंज बात, अनटुट पंडार अनठट अपार, अडीठ धर्म अतटीठ कर्म, अरबरण अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद त्वा प्रसाद। कर नालिया हैं अर कालिया हैं, खल खंडन हैं मह मंडन हैं, जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं, कल कारण हैं सर्व उबारण हैं, त्रित के धन हैं जग के कारण हैं, मन मान्या हैं जग जान्या हैं, सर्वंग पर हैं सर्वंकर हैं, सर्व पास्या हैं सर्वनाश्या हैं, करणाकर हैं विश्वम्बर हैं, सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं, पह मंडस हैं खल खंडस हैं, पर ते पर हैं करणाकर हैं, अजपा जप हैं अथप्पा थप हैं, अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं, अमृता मृत हैं करणाकृत हैं, अकृता कृत हैं तरणी तृत हैं, अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं, अजबा कृत हैं अमृता मृत हैं, नरनायक हैं खलकायक हैं, विश्वम्बर हैं करणालया हैं, नृपनायक हैं सर्वपायक हैं, पवपंजन हैं अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं जप जापन हैं, अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं हर्ता हर हैं, परमात्म हैं सर्व आत्म हैं, आत्म बस हैं जस के जस हैं, पुजंग पर्यात छंद। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अछरी छंद। अजय अलय अपै अभय अपू अजू अनास अकास, अगंज अपंज अलख अपख, अकाल दयाल अलेख अपेख, अनाम अकाम अगाह अटाह, अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकारमंग अपारमंग अगंजे अलेखे, पुजंग पर्यात छंद। नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे, अगंजल अनामे समस्तल निवासे, निकामंग विपूते समस्तल स्वरूपे, ककारमंग प्रणासी सतारमंग विपूते, सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी, करीमल कनिंदा समस्तल निवासी, अजायब विपूते गजायब गनीमे, हरियंग करियंग करीमल रहीमे, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते, स्वयं पव सुपंग सर्वदा सर्वजुगते, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंग विपूते, तुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंग विपूते,
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं तो प्रसाद पही है, श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के, देख फिर ओकर जो गजरी के, सूर्य सुराधन शुद्ध सदा देख, संत समूह अनेक मती के, सारी ही देश

अंग जरे जर संग अनूप अतंग सुरंग सवारे कोट तो रंग को रंग से कूदत पौन के गौण को जात निवारे पारी पो जान के पूप पली बेद न्यावत शीस न जात पिचारे एते पे तो कहा पे पूपत अंत को नागे ही पाए पदारे गीत फरै सब देश तिसान को बाजे तो ढोल मेरे दंग नगारे गुंजत गुड़ ग जान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूत पविख पवान के पूपत कौन गणै नहीं जात विचारे सिरिपत सिरि भगवान पजे बिन अंत को अंत के तामस दारे तीर्थ नान दया दम दान

आहार जतीजत तार सवै सो विचार हजार कदे खै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रती बिन एक ना लेख है सुध सुपा दुरंत दोबा सो साज सुना दुरजान दलेंगे पारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बर यार अभिचार है सार की तार पछैया तोरत देश मिलंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंद निसाचर पूत पविख पवान चपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत सुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्तर सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादक दान अनेक सोमवर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सचिपत अंत से जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है प्रग ते नर फेर न दे तरेंगे कहा पे ओ जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक त्यान लगायो नात फिर यो लिए सात समुद्रन लोक गए ओ पर लोक गवायो बास की ओ बिखयान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच को हो सुन ले हो सवै जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभ पायो काहू ल पाहन पूज तरे ओ सिर काहू ल लिंग गरे लटकायो काहू लखे ओ हर अवाची दिशा मह काहू पचा को शीस नवायो कौ बदान को पूजत है पस कौ मृतान को पूजन तायो कुर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को पेद न पायो कौ बदान को पूजत है पस।

हमारा अपना जानक रो प्रतपारा, हमरे दुष्ट से बै तुम कावो, आप हाथ दे मह बचावो, सुखी बसैमो रो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मूरत छानिज गर्दा करिया, सब्बा रन को आज संगरिया, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाट को अवरण त्याओ, जो पर चाओ सु तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन सत्र हमारे मारिये, आप हाथ दे मजा उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हुजो सदा हमारे पच्छा, सिरिय स्तुजु करो रक्षा, राख लो मोय राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो परिच तुर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सको काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्माजू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जक्षण उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोए गुरु समझयो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सक प्रजाजन आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहबत कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते तुकी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना, कट कट के पट पट की जाना, जब उत्करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकरख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत दे तर सबहू, जेते बदन सृष्ट सब तारा, आप आपनी बूझ उचारा, तुम सब हीते रहत निरालम, जानद वेद भेद अर आलम, निरंकार निरपकार निलंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत भेदा, ताको कृपा हन अनुमानत, महामूढ़ कच भेद न जानत, महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चीनत न पिव, आप आपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पिसारा, कहविद सजा प्रथम संसारा, एका रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सितज कीनी, उत्पज खान बहु रच दीनी, कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर अकैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव, अब्रत छा में रीतम करो, सिख अबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मरेच करो रनकाता, जे अस्तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुआ मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्या है, ताके काल निकट नह अह, रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट तिरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो, ताके ताप तनक महर हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा छुए सकन कोई, एक बार जिन तुम्हें संबारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लहो उबारी, सर्ब ठौर मोहो सहाय, दुष्ट दोख ते लहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सब राता, किल बिख सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को छा करता, सिरिय स्तुज जब दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन बां चिंत पल पावे सोई, दुख न तिसे ब्यापत कोई, अड़िल सुने गुंग जो याहिस रसना पावई, सुने मूड़ चित लाय चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन्नर के रह, हो जो याकी एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह सैस पिनिज, अर्ध सैस फन तीन के हिज्जा,
पादरव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सदारा सवैया पायंग है जब ते तुम रे तब ते को आँख तेरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो सिमरित शास्त्र वेद सबैब अवैद कह हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुम रीकर मैं न के सब तोहे बखान्यो दोहरा

0: तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतकर्ता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग तन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दोत गावो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना सब नाग कला सम्राथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कुछ है जिसते सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे सब कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पखा सब गवाइया के शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब बजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बैठो जिस दियाँ ए वडियाइया कह नानक सुनो संत हो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कायस भागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तर करम पाया तो जिनको से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख होआ तितकर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाज हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नाव होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बाज हो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सबको कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरोह जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावै पावै ता सोजन देह जिसनो होर क्या करहे बेचारिया एक भरम पूले फिर हे दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिन्ना पाणा पावे कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आवहु संत प्यार हो अकथ की करह कहानी करह कहानी अकथ केरी कित द्वारा पाईऐ तन मन धन सब सोप गुर को हुक्म मन्नै पाईऐ हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावहु सच्ची बाणी कह नानक सुनहु संतो कथहु कथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किनै न पाया चतुराई न पाया किनै तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत भरम पलाया माया तो मोहनी तिनै कीती जिन ठगोली पाया कुरबान कीता तिसै विट हो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किनै न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चितलाइया ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइया सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया अंतो न पाया किनै तेरा अपना आप तू जानहे जिए जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणे आखे त वेखहे सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत न पाया सर नर मंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाला निराली भगता केरी बिखम मारग चलना लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना खन्ने हो तिक्खी वल हो निक्की एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिन्नी आप तजया हर वासना समाणी कहै नानक चाल पगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाहे तिव चलहे स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाहे तिवै चलहे, जिन्ना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाए, से हर हर सदा स्ते आवहे। जिसनो कथा सुनाहे अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावहे। कहै नानक सच्चे साहिब, ज्यो पावै तिवै चलावहे। एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया। एहो तिन कै मन वसया, जिन धुरहो लिखिया आया। एक फिरहे कनेरे करहे गला, गली किना न पाया। कहै नानक शब्द सोहिला, सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना, जिन्नी हर ते आया। हर ते आया पवित होए, गुरमुख जिन्नी ते आया। पवित माता पिता कटंब सहित स्यो, पवित संगत सुभाइया। कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिन्नी मन वसाया। कह नानक से पवित, जिन्नी गुरमुख हर हर ते आया। करमी सहज न उपजै, बिन सहज सहसा न जाए। नह जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कमाए। सहस जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। मन धोवहो शब्द लाग हो, हर स्यो रहो चित लाए। कह नानक कर प्रसादी सहज उपजै, एह सहसा इव जाए। जियहो मैले बारहो निर्मल, बारहो निर्मल जियहो तमैले। तिन्नी जन्म जुए हारिया, एह तिसना वड्डा रोग लगा। मरन मन हो विसारिया। वेदा मह नाम उत्तम, सो सुन है नाही। फिर है ज्यो बेतालिया, कह नानक जिन सच तजिया। कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया। जियहो निर्मल बारहो निर्मल, बारहो त निर्मल जियहो निर्मल। सतगुर ते कारणी कमाणी, कूड़ की सोए पहुँचै नाही। मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिन्नी खटिया। भले से बन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल। सदा रहे गुर नाले, गुर के चरण हृदय ते आए। अंतर आत्मै समाले, आप छड सदा रह परनै। गुर बिन अवर न जाना कोई। कह नानक सुन हो संत हो, सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते वेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होर थै कोई, पुछहु बिबेकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए। आवहो सिख सतगुरु के प्यार हो, गावहो सच्ची बाणी। बाणी त गावहो गुरु केरी, बाणी आ सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवै, हृदय तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग, जपहो सारंग बाणी। कह नानक सदा गावहो, एह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाज हो, होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख बखाणी। हर हर नित करहे रसना, कहया कछु न जानी। चित जिनका हिर लया माया, बोलन पे रवाणी। कह नानक सतगुरु बाज हो, होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, एहो होआ समाओ। शब्द सेती मन मिलया, सच्चै लाए पाओ। आपे हीरा रतन आपे, जिसनो दे बजाए। कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। शिव सख्त आप उपाय कै करता, आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आप वेखै, गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त, शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै, एक सिसो लवलाए। कह नानक आप करता, आपे हुक्म बजाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार न जानी। तत्तै सार न जानी गुरु बाजहो, तत्तै सार न जानी। तेही गणी संसार भ्रम सुत्ता, सत्या रैण बहाणी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसया। बोलहे अमृत बाणी, कह नानक सो तत् पाए। जिसनो आंदन हर लिव लागे, जागत रैण विहानी। माता के उदर मैं प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारिय। मन हो क्यों विसारिये ए वरदाता, जे अग्न मह आहार पहुँचावे उस नो कहो पोहे न सकी, जिस नो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए कह नानक ए वरदाता, सो क्यों मन विसारिये। जैसी अग्न उदर मह तैसी बाहर माया, माया अग्न सब एको जेही करते खेल रचाया, जातिस पाणा ता जम्या परवार भला पाया, लिव छुड़ की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचै माया पाया, हर आप अमोलक है मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसे बिठो रहे लोक विल लाए, ऐसा सतगुर जी मिलै तिसनो सिर सोपिए विच हो आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहै हर विसै मन आए, हर आप अमोलक है भागत ना के नानका जिन हर पल्लै पाए, हर रास मेरी मन वंजारा, हर रास मेरी मन वंजारा सतगुर ते रास जानी, हर हर नित जप हो जियो हो लाहा खट हो दिहाड़ी, एहो तन तिन मिलया जिन हर आपे पाणा, कह नानक हर रास मेरी मन होआ वणजारा, ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कित जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस पहड़ न तृष्णा लागै आए, एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिले जिस आए, कह नानक होर अनरस सब बीसरे जा हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी तातु जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच तातु जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझया ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचया जोत राखी तातु जग मह आया, मन चाव पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाव सखी गृह मंदिर बनया, हर गाव मंगल नित सखिए सोक दुख न व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे अपना पिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो, ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर सो चितलाया, ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तम देख दे, एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई, कोहो नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलया दिब दृष्ट होई, ए श्रवण हो मेरे हो साचा सुनना नो पठाए, साचा सुनना नो पठाए शरीर लाए सुनहो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समाणी, सच अलख वडाणी ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र होवो साचा सुनना नो पठाए, हर जियो गफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया, गुर द्वारे लाए पावनी इकना दसवा द्वार दिखाया, तह नेक रूप नाव नवनित तिस्ता अंत न जाई पाया, कहो नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया, एहो साचा सोहला साचा घर गावहो गावहो ता सोहला घर साचै, जिथै सदा सच त्यावहे सचो त्यावहे जा तुद पावहे गुरमुख जिन्ना पुजावहे, एहो सच सबना का खसम है जिस बक्से सो जन पावहे, कह नानक सच सोहला सच्चै घर गावहे, आनंद सनो वड़पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पै सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे अपर पूरे। बिनवंत नानक कर चरण लागे वाजे अनहद तुरे। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहे अपर पूरे। बिनवंत नानक कर चरण लागे वाजे अनहद तुरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: This is CKYR 106.7 FM Calgary.

अलमल खाई सिर शाही पाई मोर खंदे पत गवाई विण नावे किस थाई ना पाई रहे बेबाणी मड़ी मुसानी।

खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृतये सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो नानक ताका दास है सोई निरंजन दयो महला दूजा।

0: Norwegian sensation.
1: Red FM.
2: This is CKYR
3: 106.7 FM, Calgary.
4: सन्मानी उग्र खालसा जी प्रोग्राम अनहद बाणी आप सरवण कर रहे हो। बड़े ही प्यार अदब अते सत्कार दे नाल सरवण करिए जो अज दा सानू हुक्मनामा बख्शिश होया सचखंड श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर तो जी।

सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी। तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी। जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी और रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कह न सको बनवारी। हम पापी पाथर नीर डुबता कर कृपा पाखण हम तारी। जन्म जन्म के लागे बिख मोरचा लग संगत साध सवारी। जा कंचन बैसंतर ताया मल काटी काटत उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर और तारी। हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हम मारी। हर हर आगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी। जान का कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी। हर हर आगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी। जान का कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवह संत भगत तिनके सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत।

0: तेनू पता सानू हुण की करना चाहिदा?
1: की
0: किचन अपलायंसेस फाइनली रिप्लेस कर लेने चाहिदे।
1: तुसी ए गल तां सालां तों कह रहे हो।
0: हां बिल्कुल, पर हुण